0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: छापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा, आई तो है किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है तो कहा कि जिसका हर रोम, किसी ने पूछा राधा कौन है तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांप

पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह करके गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

क्योंकि इंसान ही नहीं। खुद कृष्ण भी

राम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना

सबसे धन्य दिन होगा, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती है।

अभी भक्त कहते हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: आईक्यू हमें बताता है हम कितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ईक्यू बताता है हम कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। कब रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है और कब चुप रहना है, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर, क्यों आज के फास्ट पेस्ड और स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में ये एक स्किल नहीं जरूरत बन चुकी है। मेरे साथ हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: ओम शांति, थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या होती है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसा कि नाम में ही है कि एक तो भाव, इमोशनल माने हमारी भावनाएं, इंटेलिजेंस माने समझ, जो भावनाओं की समझ रखे उसे ही कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस।
2: सही बात है।
1: आज हम सब इंटेलिजेंट बहुत हैं, हर चीज की नॉलेज है, आज चांद पर पहुंच गए हैं, उससे भी बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, पाताल तक पहुँच रहे हैं, मतलब धरती के गर्भ तक हम पहुँच रहे हैं। लेकिन आज सारी दुनिया में हम घूमते घूमते सात समुंदर पार तक जाते जाते कहीं ना कहीं हम अपने भीतर वो खोजना भूल गए हैं।
2: सही बात।
1: हम अपने आप की भावनाओं को समझना भूल गए हैं, एक दूसरे की भावनाओं से हम दूर हो गए हैं। हम सब चीजों की नॉलेज रखते हैं, लेकिन मेरे आस पास में मेरे प्रति लोगों की या उनके प्रति मेरी भावना कैसी है, इसको आज हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं।
2: सही बात है।
1: इसीलिए आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है इन चीजों को समझने की, इसलिए इसको इंटेलिजेंस का नाम दिया गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। माना जिसने दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लिया वो सबसे ज्यादा अपने आप में ही बहुत बुद्धिमान कहलाता है।
2: सही बात है।
1: क्योंकि कोई भी व्यक्ति है आज माइंडेड बहुत है, बहुत सारी मशीनों को मैनेज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि मटेरियल मैनेज हो रहा है, मशीन मैनेज हो रही है, मनी मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन जो हमारी इमोशंस है उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो मन है, अर्थात मन को अगर हिंदी करें तो मन की भी बात करें तो मन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मन की भावनाओं को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज जरूरत है आज मन की भावनाओं को समझने की। जब मन की भावनाओं को जो समझना सीख लेता है, आप देखेंगे अगर आपसे पूछे कि आपको इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन जानता है, तो आप किसका नाम देंगे?
2: मम्मी।
1: शायद अगर मदर की बात करें तो दुनियावी ज्ञान उनके पास शायद ना हो,
2: बिल्कुल
1: बहुत सारी किताबी ज्ञान ना हो, लेकिन उनके पास कोई तो ऐसा ज्ञान है जो वो इतने सारे लोगों के बीच में आप रहते हुए भी आपने उनका नाम लिया, क्योंकि उनके पास है इमोशनल इंटेलिजेंस।
2: सही बात।
1: क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझती हैं, आपके भावों को समझती हैं, आपका चेहरा उदास है उसको वो समझ रहे हैं, आप आज खुश हैं किस बात से खुश हैं, अगर आप खुशी दिखा रहे हैं तो भी वो पकड़ लेते हैं कि आज झूठी खुशी दिखाई जा
2: रही है। सही बात है।
1: तो वो क्या है? वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे ज्यादा आज जीवन में जरूरत है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिसकी आज बहुत बहुत कमी होती जा रही है।
2: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी।
1: प्रिया जी, एक होता है कि वो करियर वाइज या एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल सोचता है, बट उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो क्या आज के टाइम में इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज्यादा मतलब मैटर करता है या फिर एकेडमिक्स में बेटर होना?
2: जी बिल्कुल, अभी आप स्कूल में हैं तो एकेडमिकली बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जाते हैं जहाँ जॉब प्रोफाइल्स देखी जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो वहाँ पर अगर आज की डेट का जो देखते हैं वो इमोशनल जो बैलेंस्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है।
1: बिल्कुल सही बात।
2: उसके एग्जाम्स भी होते हैं, वो प्रैक्टिकली भी उनका देखते हैं, नोटिस किया जाता है कि कैसे आप अपने सारा सिस्टम को डील करते हैं, ना केवल मशीन लेकिन मेनली मैन पावर को डील कर पाना आज के डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है।
1: सही बात।
2: और वो इमोशनल इंटेलिजेंट जो होगा वही डील कर पाएगा। एकेडमिकली तो आप साउंड बस एक लेवल पे एंट्री के लिए कर सकते हैं, उसके बाद तो आप क्या है रिलेशनशिप में भी वही मैटर करता है, दुनिया में भी वही मैटर करता है, और आपकी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें भी यही चीज जो है वो आपको ज्यादा आगे तक लेकर जाती है।
1: बिल्कुल सही बात।
2: इसलिए एकेडमिकली ओके फाइन, आप टॉपर हैं, बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो जरूरी है, डे वन से जरूरी है, लेकिन आगे लाइफ में आपको EQ यानी इमोशनली जो बैलेंस कहें या इमोशनल क्वेश्चन कहें, उस चीज में ही अगर आप अपने आप को निखारते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, बढ़ावा देते हैं, समझ अपनी इंक्रीज करते हैं, कि इस चीज के लिए कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को जितना आप स्टडी कर पाते हैं उतना ही आप इसमें साउंड हो पाते हैं और उतना ही आप बहुत अच्छा आगे डील कर पाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, क्या अपने इमोशन समझना ज्यादा मुश्किल है या फिर दूसरों के?
1: इसका जवाब तो हर कोई अपने हिसाब से दे सकता है कि आज खुद को ही हम समझ नहीं पा रहे।
0: बिल्कुल,
1: हमारा मन क्या सोच रहा है ये नहीं पता है।
0: सही बात है।
1: और इसके लिए गीत भी बन गया है ना कि हमारे मन में दो बातें हैं, ये क्या शोर कर रहा है उसका भी पता नहीं है।
0: सही बात है।
1: तो उस शोर को समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर में कितने थॉट्स चल रहे हैं, कब कौन सा थॉट आ जाए इस चीज का भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में है खुद के इमोशंस को समझना।
0: सही बात।
1: हम दूसरों की भावनाओं को फटाफट हम भावों को समझ लेते हैं, और वो भी किस भाव से, कहीं ना कहीं दूसरे ने जैसा हमें सिखाया। आज हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, एक हमारी लाइफ ऐसी बन गई है कि हम बिना किसी के सजेशन के अपने आप के सजेशंस को भी राइट नहीं कह पाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इनफैक्ट अगर हम एक ड्रेस भी लेने जा रहे हैं और हमें पहननी है, खुद को पहननी है, तब भी हम किसी ना किसी को साथ लेके जाएंगे कि आप थोड़ा सा बताओ,
0: एडवाइस चाहिए।
1: और फिर उसके बाद भी अगर हम वो पहन भी लेते हैं और किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो भी हम डाउटफुल हो जाए।
0: जी बिल्कुल।
1: चाहे वो मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, जैसा भी है, लेकिन हमें दूसरे की ओपिनियन
0: डिपेंड
1: हो गए। तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को जानना बहुत जरूरी है, और यही सबसे ज्यादा आज मुश्किल हो गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसके पीछे कारण क्या है, मुश्किल क्यों हो गया है, क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं।
0: सही बात है।
1: अगर जब तक हम अपने आप को समझने के लिए अपने आप को टाइम नहीं देंगे, सुबह उठते ही हम तब हैं जब चारों तरफ शोर है और हमारे काम का लोड बढ़ गया है, और सो हम तब रहे हैं जब हमारी आंखें बिल्कुल मोबाइल देखते देखते थक करके बिल्कुल बोझिल हो जाती है, और फिर हमें लगता नहीं भारी हो गई अब तो रख देते हैं।
0: सही बात।
1: और वो भी हम कहाँ देख रहे हैं, तो बाहर की दुनिया में, अपने इमोशंस तो देख ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम, मुश्किल कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा टाइम बस हमें अपने साथ स्पेंड करने के लिए चाहिए, ताकि हम अपनी भावनाओं को, अपने आप को एटलीस्ट जान सके।
0: सही बात।
1: हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, हमारे भाव दूसरों के प्रति कैसे हैं। हम कई बार कह भी देते हैं मेरे भाव सबके प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ चीजें, डिपेंडेंसी हमारी उसमें जरूर छुपी हुई होती है। तो भावनाओं को पहले खुद के समझे तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बहुत इजीली समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, किसी भी रिलेशनशिप में हमने ये सुना ही होगा कि वो प्रैक्टिकल आंसर देता है या फिर उसमें इमोशनली इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो सोचता ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता। तो एक रिलेशनशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितने इम्पोर्टेंट है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
1: जितनी एक रिलेशनशिप में बातचीत जरूरी है उतना ही एक दूसरे का इमोशनली बैलेंस्ड कहें वो बहुत जरूरी हो गया है, उतना ही चाहिए अगर एक रिलेशनशिप को हम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन है।
0: जी।
1: एक बच्चा अपने माँ के साथ भी डील करता है तो माँ बच्चे से ज्यादा इमोशनली मैच्योर है, तभी वो अपने बच्चे को 20 साल तक पालती है।
0: सही बात है।
1: और जब बच्चा उस लेवल पर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उतना इमोशनली मैच्योर नहीं है तो फिर उसके बाद चीजें बिगड़ने लगती है।
0: जी।
1: आप कभी इस बात को नोटिस करिएगा, जब तक माँ को ही सुन रहा था क्योंकि वो मैच्योर है तो चीजें ठीक थी, जब दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं, एज नहीं लेकिन लेवल एक आ जाता है यंग का, और अब मैं अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा हूँ लेकिन मैं मैच्योर हूँ नहीं, तब क्लैशेस शुरू होती है। तो सेम इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप में मैं बात करूंगा ही करूंगा, हूंगा तो रहूंगा नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: और करूंगा तो अगर मेरे वर्ड्स में वो चीजें नहीं है जो हाँ मेरी मैच्योरिटी शो करती हो, जैसे हर बात में मैं ब्लेम गेम करता हूँ, कोई अगर लेट आ रहा है तो मैं ऑलवेज ही ब्लेम कर रहा हूँ कि हमेशा ही लेट हो, ठीक है, तो हो सकता है मेरे पास जो चीजें हैं वो उनसे बेहतर हैं और वो जिस सिचुएशन से निकल कर आ रहे हैं

0: हमारा वॉल्यूम राइज होने लगता है, जबकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए
1: जी।
0: लेकिन आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग खत्म होती जा रही है, हमारा चिल्लाना एंड ओवरस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है, यानी हम अंदर की बातों को नहीं समझना चाहते, हम ऊपर जो दिख रहा है उस बेस पे चलने लगते हैं। आपने ऐसे बोला था, ऐसे रिएक्ट किया था, ये कहा था, ऐसे कहा था, अंदर कितनी उसको चोट थी जिस वजह से उसने ऐसा बोला, वो चीज हम नहीं समझना चाहते।
1: सही बात।
0: क्योंकि हम अपनी चोट से घायल हैं और अपनी चोट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम ये चाहते कि मेरी हर्टनेस को आप देखो, कि मेरे को चोट लगी है, अपनी मत दिखाओ। हाँ, सामने वाले ने अगर मेरी चोट देख ली फिर अच्छा ठीक है, तुम भी अपनी दिखा लो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मेरी चोट ज्यादा है। तो अगर ये चीज हम रिलेशनशिप में रखेंगे तो फिर तो चोट चोट चोट चोट, और फिर आप जानते ही है, फिर घाव बढ़ता ही चला जाता है, फिर उसे नासूर कहा जाता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: और जहाँ नासूर हो गया तो फिर कहीं सुर और ताल मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को समझें, चीजों को समझें, और जहाँ हम आगे बढ़ते हैं किसी भी रिश्ते में तो बाहर की चीजों को समझना कम करें, अंदर की चीजों को समझना हम ज्यादा शुरू करें।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और जहाँ रिश्ता बढ़ाना है तो सिर्फ वो अकेला व्यक्ति नहीं है जो मेरी लाइफ में आने वाला है, उसके साथ 100 चीजें जुड़ी हुई है जो मेरी लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप 100 को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तो उस एक को समझने में आपसे भूल हो रही है।
1: बिल्कुल सही है।
0: क्योंकि वो अकेला नहीं आ रहा है। तो इसीलिए चीजों को और बेहतरीन समझने के लिए इमोशनली मैच्योर होना आज की डेट में बहुत जरूरी है।
1: सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है
1: यस पापा
0: हेलमेट पहनना है
1: ओके पापा
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे
1: नो पापा
0: यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बना है दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: कहते हैं कि अगर सामने वाले पार्टनर को बोला जा रहा है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, आप इसको अडाप्ट करो या फिर सीखो, तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है या फिर ये नेचुरल ही आती है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
2: अगर नेचुरल की बात कही तो ये नेचुरल भी होती है और सीखी भी जाती है। जी, दोनों चीजें हैं। किसी किसी के अंदर जन्मजात ही फीचर डला हुआ होता है कि वो समझते हैं एक दूसरे की।
1: जी,
2: हर एक को आप घर में भी देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बहुत भावनात्मक होते हैं और वो सबकी भावनाओं को समझ करके ही काम करते हैं।
1: जी,
2: कई बार ऐसे लोगों को लोग पागल कह देते हैं कि ये ज्यादा ही भावुक है या इस तरीके की, वो सेंसिटिव नेचर होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सीखना भी पड़ता है और कई बार परिस्थितियाँ हमें सिखा देती हैं। आप अगर देखेंगे तो कई बार कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, बस उसके सामने सिचुएशंस हार्ड आती जाती है, तो उसका बिहेवियर कुछ समय के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, वो व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है। और कई बार लोग बोल भी देते हैं कि आप तो बहुत स्ट्रांग थे, अभी आप ऐसे कैसे हो गए?
1: सही बात है।
2: और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सेंसिटिव व्यक्ति एकदम से हार्डनेस पे आ जाता है और वो किसी की इमोशंस की परवाह नहीं करता है। तो दोनों ही चीजें होती हैं, दो सीखी भी जाती है और जन्मजात भी होती है। लेकिन हमें ये चीज अगर कहीं हमारे पास नहीं है ये फीचर्स, तो हम सीख सकते हैं, हम परिस्थितियों से भी हमें सीखते हैं। और हम कहें कि इसको सिखाने के लिए सबसे पहली गुरु माँ होती है, वो बहुत अच्छी इस चीज में बच्चे को कैसा बनाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: सही बात है,
2: उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा गिरता है तो एक माँ उसको गिरने पे उठाती है तो कहती है कि अच्छा बेटा कुछ नहीं हुआ है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
1: सही बात
2: है। तो उसके माइंड की अब ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें स्ट्रांगनेस आ रही है। एक मदर है गिरने पे बच्चे को दूसरे को ठोकती है कि अच्छा इसे तुझे गिराया है, इसे तुझे मारा है, तो अभी उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है कि अपनी हर गलती का ब्लेम वो दूसरों पे डालता है, उसकी वैसे ही परवरिश चल रही है।
1: जी।
2: एक मदर है जो वो कहती है कि देख के भी इग्नोर कर देती है कि खुद खड़ा होगा, तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे खुद लड़ना है,
1: सेल्फ इंडिपेंडेंट
2: हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये हमारे बचपन की परवरिश पे कुछ जन्म जाते हैं, कुछ परवरिश है, कुछ हमारा माहौल हमें सिखा देता है। और अगर नहीं तो हम अपनी विल पावर से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर वो विल पावर है कि हम अपनी इमोशनल जो नहीं हम दूसरों के समझ पा रहे हैं, वो थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़े अपने आप को जान करके हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीख लेते हैं। तो ये सीखी भी जा सकती है और जन्मजात भी होती है।
1: बिल्कुल सही बात है
3: जी, जैसा कि ज्योति जी ने कहा और ऐसे ही विचार एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेनन गोल्डमैन, उन्होंने भी यही कहा है कि एक स्किल है जो समय के साथ साथ आपकी बढ़ती जा सकती है या ट्रेन की जा सकती है और वो है EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस।
1: जी,
3: तो इसको सच में हमें बढ़ाने की आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक, चलिए ठीक है, दुनिया के सारे लोगों को हम साइड कर देते हैं बिकॉज मेरी किसी से अंडरस्टैंडिंग या मैचिंग नहीं हो रही है, ओके फाइन आई कैन लिव विदाउट देम, मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं अकेला घूम भी सकती हूँ, अकेले पका के खा भी सकती हूँ। आज की डेट में ऐसे बहुत से लोग होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू हैव EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद को तो डील कर ही रहे हैं और अगर आप अपनी इमोशंस को खुद नहीं डील कर पा रहे हैं तो भी जीना जो है वो दिक्कत में आ सकता है।
1: बिल्कुल।
3: तो इसलिए हम देखते भी हैं कि कितने यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, सुसाइड तक के लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्यों? वो दुनिया से तो कट ही रहे थे लेकिन खुद से भी कट गए। तो खुद से अगर हम कट जाएंगे तो फिर जीना तो बिल्कुल ही हमारा जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हालत में इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई, सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, गुस्से को कंट्रोल करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है?
1: क्योंकि गुस्सा भी हमारी एक इमोशन ही है और उसे कंट्रोल करना, एक्चुअल में हमारा नेचर जो है वो गुस्से वाला है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: हमने उसे बना दिया है।
0: जी,
1: कुछ लोगों को देख करके हम ऐसा बनते जा रहे हैं और कुछ चीजें परिस्थिति हमें ऐसा बना देती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा करने पे काम जल्दी हो जाता है तो हम उसी तरीके का अपना नेचर बना लेते हैं।
0: जी,
1: फिर हमारी धीरे धीरे धीरे वो करते हुए जब हम वही काम बार बार करते हैं, गुस्सा करने का, तेज बोलने का, तो वो फिर हमारी नेचर बन जाती है, फिर हमारा वो नेचुरल हो जाता है।
0: सही बात है,
1: कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी फिर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने गुस्से को अपनी नेचर बना लिया है, आज उस पर थोड़ा सा अगर अटेंशन देते हैं तो हम उस भावना को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ही अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और हम रोज ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जो भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का रिएक्ट किया है या कुछ गलत भी अगर उसने किया है तो उस समय उसके लेवल से वो राइट है। अब अगर हमें उसको समझाना है कोई चीज, तो गुस्सा करके क्या हम राइट पाथ पे हैं?
0: नहीं।
1: तो जब हम राइट नहीं है तो हम रॉन्ग कभी रॉन्ग को सही नहीं कर सकते।
0: सही बात।
1: राइट पाथ पे हम रहेंगे, पीसफुली हम किसी को समझाएंगे तो व्यक्ति जरूर समझेगा। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो फिर हमारा वही जो क्रोध का हमारा भी नेचर बन गया था, फिर वही इमोशंस हमारे वो वापस हमारे पीसफुल वाला इमोशन हो जाता है। हमारे क्रोध वाला, गुस्से वाला जो नेचर बन रहा है, जो हमारे अंदर बार बार उस तरह की फीलिंग्स आ रही है, वो हमारी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है।
0: सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, आज के यूथ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है?
1: मेरे हिसाब से आज के यूथ के लिए नहीं, हर एक के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि जो हमारी ये पूरी चर्चा चली है, तो ये चीज आज की डेट में एक सॉफ्ट स्किल नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है।
0: सही बात है।
1: यानी अगर जीना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस होकर जीना है, अदरवाइज जीना बेकार या फिर जीना बहाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। क्योंकि आज का जो फास्ट लाइफ है सोशल मीडिया आपका, जो इतना हम कहें कॉम्पिटिटिव बन चुका है, जो हम लाइफ में सब चीजें जोड़ते चले जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक में भागते चले जा रहे हैं, वहाँ हमारा इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अंदर से इंटेलिजेंट नहीं है और बाह्य चीजों से हम, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। चार लोगों ने गाड़ी खरीदी, उसका इम्पैक्ट हो गया। चार लोगों ने हमारे लिए कुछ कहा, उसका इम्पैक्ट हो गया। चार लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसका इम्पैक्ट हम पर हो रहा है। चार लोग बहुत उदास है, उसका इम्पैक्ट हम पर हो रहा है। तो यानी मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ।
0: सही बात है।
1: और चार लोगों का मेरे पर असर हो रहा है, तो मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी आइडेंटिटी क्या रखता हूँ?
0: सही बात।
1: मेरी अपनी सोच क्या है, मैं कैसा फील करूँ, ये कौन डिसाइड करेगा? वो चार लोग नहीं, ये मैं हूँ जो मुझे डिसाइड करना है।
0: सही बात है।
1: सारी दुनिया, पेरेंट्स या जो भी रिलेशंस में है, वो जो भी कह रहे हैं वो मुझे सुनना जरूर है, लेकिन समझ तो मुझे अपनी यूज करनी है।
0: सही बात है।
1: अगर घर में फॉर एग्जाम्पल किसी की ना हो, लेकिन अगर डेथ भी होती है, तो उस दौरान भी एक व्यक्ति आप देखेंगे पूरी फैमिली में, वो स्ट्रांगली खड़ा होगा।
0: सही बात है।
1: वो पीछे जाके रो रहा होगा, लेकिन आगे सबके सामने सब चीजों को डील कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। तो क्यों? क्योंकि उस दौरान वो बहुत जरूरी है। अगर हर कोई रोने बैठ गया तो घर में कुछ भी चलेगा नहीं और सारे के सारे डेथबेड पे ही पहुंच जाएंगे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूथ के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आने वाली दुनिया में अपना जीवन शुरू कर रहे
0: हैं। सही बात।
1: और इतने ड्रास्टिक चेंजेस में, इतने नेगेटिव जो मैं कहूँ आपका सर्कमस्टांसेस होते जा रहे हैं, चैलेंजेस आपके इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि जो माइंड को बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं,
0: बिल्कुल
1: इमोशंस को बहुत बुरी तरह हिला देते हैं। हम देखते हैं एक छोटी छोटी बातों में है, आज के बच्चे जो है वो बहुत हिल जाते हैं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल तोड़ देते हैं, हर चीजों से दूर होने लगते हैं, और किसी से अगर बात करनी है तो वो चैट जीपीटी खोल लेते हैं।
0: सही बात है।
1: उन्हें सॉल्यूशन चैट जीपीटी से मिलता है। तो ये अगर हमारा समाज होता जा रहा है, वेयर आई डोंट फील मींस एक कि मैं मम्मी से पूछूं या पापा से पूछूं, उसकी जगह आई एम गोइंग फॉर द चैट जीपीटी, तो फिर आने वाले टाइम पे वो कौन सी जीपीटी पे जाएंगे? आने वाला वर्ल्ड हमारा कैसा होगा? आई डोंट नो। वो रोबोटिक ही होगा, क्योंकि मैं रोबोट से ही तो अपने चीजें पूछ रहा हूँ।
0: सही बात है।
1: तो मेरा लाइफ क्या होगा? मेरी सोच भी रोबोटिक हो जाएगी, मेरी फीलिंग्स रोबोटिक हो जाएगी। मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो आई लास्ट चैट जीपीटी, उसकी शादी क्या, उसे गिफ्ट क्या दूं?
0: सही बात है।
1: तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंसानी दुनिया में जा रहा हूँ या चैट जीपीटी वर्ल्ड में जा रहा हूँ, एआई में जा रहा हूँ? इट्स ओके, यूज इट बिकॉज इट इज देयर, बट मैं इंसान हूँ और इंसानों के बीच ही मुझे रहना है। मैं चैट जीपीटी के साथ 24/7 नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल।
1: मेरा खाना मुझे वो नहीं देने वाला है। व्हाट आई लव टू ईट ही कैन डिसाइड, और इधर ही कैन गिव मी द मेन्यू, बट मुझे बना के तो कोई इंसान ही देगा।
0: सही बात है।
1: बनाना तो मुझे ही पड़ेगा, और खाके उसका स्वाद भी मैं ही लूंगा। वो वहां यम्मी लिख देगा, आई कैन स्पेल द यम्मी वर्ड, बट वो यम्मी है या नहीं, वो मेरा मुंह, मेरा स्लाइवा, मेरा जो सिक्रीट हो रहा है, वो सारी केमिकल्स तो बॉडी ह्यूमन का ही बताएगा ना।
0: सही बात है।
1: तो इसीलिए मुझे इंटेलिजेंट इमोशनली बहुत होना जरूरी है, क्योंकि इंसानों के साथ आज कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रही है और रोबोट्स के साथ बहुत सिंपल हो रहा है, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी रोबोट को या एआई को या चैट जीपीटी, किसी भी चीज को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसे कितना यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
0: सही बात है।
1: लेकिन इंसान को फर्क जरूर पड़ता है कि आपने उसके साथ कितना समय बिताया, कितना हेल्दी समय बिताया, उसको कितना टाइम दिया, ये उससे जरूर फर्क पड़ता है।
0: सही बात है।
1: और शायद यही मुझे चोट देने लग गया है कि वो मेरी हर बात को नोट कर रहा है, और एआई तो मुझे कुछ कहता ही नहीं है, चैट जीपीटी तो मुझे कहता, जो मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर दे रहा है, दैट्स इट, वो भी मैं जितना मांग रहा हूँ उतना आंसर दे रहा है, नपा तुला।
0: सही बात है।
1: इंसान तो ज्यादा बोल रहा है, लाइक मी, कि मैं तो बोले चले जा रही हूँ, जबकि अगर एआई होता तो आई कैन स्टॉप इट। तो इसीलिए आपको इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानों के साथ रहना है, एंड आई लव टू बी इंसान, एंड आई लव टू हैव इंसान अराउंड मी।
0: सही बात है। लिसनर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज, तो आप दोनों क्या देना चाहेंगे?
1: मेरा तो यही है सभी को कहना कि सभी अपनी भावनाओं को समझें और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की थोड़े सा कोशिश करें। अगर करते हैं तो अपने जीवन में, क्योंकि इंटेलिजेंट बनना है तो सभी चीज़ों में इंटेलिजेंट बनना है, फिर इस एक फील्ड को हम क्यों छोड़ दें?
0: सही बात।
1: तो इसे इस फील्ड को भी पूरा करें और एक संपूर्णता को धारण करें।
0: सही बात है।
2: मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानों के साथ जीना है, ये याद रखना है। इंसानों के साथ हम रहने आए हैं, भगवान ने मुझे इंसान बना के भेजा है और मुझे इस जीवन में बहुत खुश रहना है, और खुश रहने के लिए मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे भी मुझे खुश रखना है।
0: इंसानों वाला
2: ऑब्वियसली।
0: ओके जी, थैंक यू। आज की कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ आता है कि लाइफ में सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी उतना ही जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को समझना और दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना ही रियल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सेफ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जाना चाहिए वहीं से है तू थिक, न नजरों में आ न मुझको तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख, बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच, बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है, बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ, BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी

0: 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: वजह।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट से याद किए जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए होती है। हे आई एम मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी वुमन की कहानी जिन्होंने उस वक्त एक चैलेंजिंग फील्ड चूज की जब वहाँ वुमन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया। एक इंजीनियर, एक ऑथर, जिनकी कहानी हमें बताती है कि असली सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट तक नहीं सीमित होती बल्कि जब आपकी मेहनत और नॉलेज किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए तब वो सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज संघर्ष की कहानी में हम सुनेंगे कैसे इंस्पायरिंग जर्नी जहां स्ट्रगल है, करेज है और एक पर्पस के साथ जीने की कहानी भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। वो हैं सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को सिंह गांव कर्नाटका में हुआ था। बचपन से ही उनका कनेक्शन बुक्स और लर्निंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हबली से कंप्लीट की और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। और 1970s के दौर में जब इंजीनियरिंग फील्ड में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ करती थी, तब सुधा मूर्ति ने इस फील्ड में अपनी जगह बनाई। वो टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली फीमेल इंजीनियर्स में से एक बनी। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक मैसेज था कि टैलेंट और डेडिकेशन के सामने बैरियर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और आप अगर कुछ नया चूज करते हो कुछ करने के लिए, तो उस चीज में आगे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ और उन्होंने आगे कहानी में अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाया, हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 FM. आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका. और लिसनर्स, हर इंस्पायरिंग जर्नी में एक मोमेंट आता है जब इंसान डिसाइड करता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या होगा. और सुधा मूर्ति जी की जर्नी भी सिर्फ करियर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रही. उन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद सोसाइटी के लिए काम करने का रास्ता चूज किया. 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में काम किया गया. सुधा मूर्ति ने राइटिंग की दुनिया में भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई. उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है और उनकी बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, 3000 स्टीचर्स एंड ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं. उनकी राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि सिंपल स्टोरीज के थ्रू उन्होंने काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया है. उनकी जर्नी के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज तब और पावरफुल बन जाती है जब वो दूसरों के लिए काम आए. तो किस तरह से सुधा मूर्ति जी की जर्नी आगे बढ़ी, हम सारी बातों पे बात करेंगे बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड द होस्ट मोनिका। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की कहानी से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेसन मिलता है कि लाइफ में सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस के लिए अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे यूज करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का चांस समझिए, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसी भी ऑर्डिनरी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे थे संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज का शो मेरा लास्ट शो है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप रेडियो महारानी के थ्रू और भी इंस्पायरिंग जर्नी सुनेंगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनेंगे किसी और होस्ट एंड दोस्त के साथ। फिलहाल आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका कर रही है शाइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। तो मुलाकात तो नहीं होगी, पर अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई विश है, कोई इमोशंस है या कोई फीलिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मोनिका लेती है आप सभी से विदा। और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए।

0: I hate water wasting रे। जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बात अगर पेरेंट बनने की होना तो ये हर कपल का एक खूबसूरत सपना होता है, लेकिन कई बार सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान नहीं होता। ऐसे में मेडिकल साइंस ने एक नई उम्मीद दी है, जो है IVF। वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम हेल्थ से जुड़े हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद होता है एक एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर IVF की बात करें तो IVF का नाम बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल और बहुत सारे मिथ हैं जो आज भी हमारे माइंड में है। तो आज जानेंगे कि IVF की जरूरत कब पड़ती है, कब ये किसी कपल के लिए काम आता है, इसकी सक्सेस किन बातों पर डिपेंड करती है और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपा, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और पोषण की पाठशाला के लिए आज एक परफेक्ट गेस्ट हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज हम IVF को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाइए कि आखिर IVF होता क्या है, और साथ ही अगर बात करें IVF की तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी से किस तरह अलग होता है।
1: थैंक यू सो मच अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। वर्ल्ड IVF डे हर साल 25 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में पहले IVF से जन्मी बच्ची लुईस ब्राउन के बर्थ 25 जुलाई 1978 की याद में मनाया जाता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो उन कपल्स की मदद करता है जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही हो। इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर लैबोरेटरी में। नेचुरल प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में एग एंड स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग फिर यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी डेवलप करती है। IVF में ये फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है। इस प्रोसेस में फीमेल को हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि एक से ज्यादा मेच्योर एग्स बन सके। इन मेच्योर एग्स को रिट्रीव किया जाता है, मेल स्पर्म्स लिए जाते हैं, लैब में स्पर्म और एग को मिलाया जाता है या जरूरत हो तो ICSI टेक्निक से एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एम्ब्रियो को 3 से 5 दिन लैब में ग्रो किया जाता है, फिर एक हेल्दी एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है जहां इम्प्लांटेशन होने पर प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस फर्टिलाइजेशन की साइट का होता है, बाद में प्रेगनेंसी डेवलपमेंट दोनों में सेम होती है। इसलिए IVF से पैदा होने वाले बच्चों की ग्रोथ, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट नेचुरल कंसेप्शन से पैदा हुए बच्चों के समान ही होती है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि IVF है क्या, होपफुली हमारे लिसनर्स को समझ आया होगा कि IVF किस तरह से काम करता है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आज आपसे जानने के लिए, तो इन सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिक ब्रेक और आकर जानेंगे कि IVF की जरूरत आखिर किन कपल्स को पड़ती है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। सो डॉक्टर, अभी तो हमने ये जाना है कि IVF होता क्या है, लेकिन अब ये बताइए किन कपल को IVF की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही अगर बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में हर तरह की दिक्कत का सोल्यूशन सिर्फ IVF ही होता है या फिर कोई और ट्रीटमेंट भी है जो एक पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखकर किया जाता है?
1: हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट IVF नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टर डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें पेशेंट की एज, हस्बैंड की एज, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रीवियस ट्रीटमेंट देखा जाता है, तब ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि कुछ दवाइयां इंजेक्शन से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कुछ कपल्स IUI से कंसीव करते हैं और सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स को IVF रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि जिन पेशेंट्स में दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, सिवियर एंडोमेट्रियोटिक, एज ज्यादा होना स्पेशली 35-40 के बाद, ओवेरियन रिजर्व कम होना, रिपीटेड IUI फेलियर, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, सिवियर मेल इनफर्टिलिटी, बहुत कम स्पर्म्स या स्पर्म्स की क्वालिटी पुअर होना, कुछ फैमिलीज में एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीजेस के रिस्क को कम करने के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का यूज IVF के साथ किया जाता है। लगभग 70-85% कपल्स को IVF की जरूरत नहीं होती। मोस्ट पेशेंट्स कंसीव विद हार्मोनल ट्रीटमेंट, ओव्यूलेशन इंडक्शन, IUI। जब इन मेथड से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, तभी IVF की सलाह दी जाती है। IVF पहला नहीं बल्कि सही समय पर सही मरीज के लिए चुना जाने वाला एक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मेथड है। हर कपल अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट, एज, मेडिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और इनफर्टिलिटी के कॉज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है।
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आज आपने हमारे साथ शेयर की है, और साथ ही ये भी बताया है कि अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही डिसाइड किया जाता है। सिर्फ IVF ही हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, ये भी आज आपने बताया है हमें, और बहुत सारे ऐसे ही सवाल है जिनके बारे में जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: तेरी बातों में सुन जाजिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया।
2: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
3: Point 6 FM. Kuch hatke.

0: शानदार सेटअप के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और आज शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में। तो डॉक्टर दीपा हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर, अगर मैं आईवीएफ की बात करूँ तो कहा जाता है कि आईवीएफ के सक्सेस की गारंटी नहीं होती, पहले तो ये बताइए ऐसा क्यों होता है, और साथ ही अगर बात करें आईवीएफ की सक्सेस की तो ये जो सक्सेस रेट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और क्या एक ही साइकिल में प्रेगनेंसी होना जरूरी होता है?
1: बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन में किसी भी ट्रीटमेंट की 100% गारंटी नहीं होती। आईवीएफ एक हाईली एडवांस्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, इसलिए हर पेशेंट की सक्सेस रेट अलग होती है। आईवीएफ की सक्सेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मदर की एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होते हैं। जैसे लेस देन 35 इयर्स में लाइव बर्थ रेट पर एम्ब्रियो ट्रांसफर इज 45-55%, मगर यही नंबर मोर देन 42 इयर्स में 5-10% से भी कम हो जाता है। यही वजह है कि यंगर एज में आईवीएफ की सक्सेस ज्यादा होती है। दूसरा, अच्छे क्वालिटी के एग्स और स्पर्म से हेल्दी एम्ब्रियोज बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सभी एम्ब्रियोज इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज में इम्प्लांटेशन चांस काफी कम होता है। एम्ब्रियो अच्छा होने के बाद भी यूट्रस हेल्दी होना बहुत जरूरी है। फाइब्रॉइड्स, एडिशंस, थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करते हैं। इन सब फैक्टर्स के साथ मेडिकल कंडीशंस, लाइफस्टाइल और आईवीएफ की लैब की क्वालिटी भी सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इस बात पर बात करें कि क्या एक ही साइकिल में प्रेगनेंसी होना जरूरी है, तो बहुत से कपल्स को पहले साइकिल में आईवीएफ से सक्सेस नहीं मिलती, मगर बहुतों को फिर भी मिल जाती है, जबकि बहुत सारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दूसरा या तीसरा साइकिल की जरूरत पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार फर्स्ट आईवीएफ साइकिल में क्यूमुलेटिव सक्सेस एज डिपेंडेंट अराउंड 40-60% रहता है, जबकि 3 के बाद 70-85% तक क्यूमुलेटिव लाइव बर्थ चांसेस हो सकते हैं।
0: जी डॉक्टर, यानी आईवीएफ की सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस कई मेडिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने अभी बताया, और साथ ही अगर बात की जाए इस जर्नी की तो हर कपल की जो ट्रीटमेंट की जर्नी है वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है, और इन्हीं चीजों का ख्याल हमें अक्सर रखना चाहिए। कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस जर्नी में हैं या फिर सोच रहे हैं आईवीएफ के बारे में, तो सबसे पहले काउंसलिंग जरूर लें अपने डॉक्टर के साथ, उनके साथ बैठे अपने सारे डाउट्स क्लियर करें एंड उसके बाद ही आगे बढ़े। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: फिशिंग ईमेल्स का ध्यान रखें और किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, वरना हो जाओगे साइबर क्राइम का शिकार।
1: पर अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो पानी को अमृत समझ पी जाना।
2: साथ आसमां जी रे, अब साथ समंदर पी रे, जन साथ सुनो में कर दे ये ऐलान।
3: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान।
4: डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम IVF के बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर IVF होता क्या है, किस तरह से ये ट्रीटमेंट काम करता है। सो डॉक्टर, अगर मैं IVF की बात करूँ ना, तो IVF को लेकर एक और कॉमन कंसर्न है, वो है इसका कॉस्ट। तो लगभग कितना कॉस्ट आता है इस IVF की जर्नी के साथ, साथ ही आज के समय में IVF ट्रीटमेंट की कॉस्ट किन बातों पर डिपेंड करती है, और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कपल को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो।
1: सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि IVF की कॉस्ट हर कपल के लिए एक जैसी नहीं होती। यह पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर डिपेंड करती है, इसलिए सिर्फ पैकेज प्राइस देख करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लगभग एक सेल्फ एग IVF साइकिल की कॉस्ट इंडिया में 1.5 से 2 लाख रहती है, जिसमें डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस, मेडिसिन, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड, एग रिट्रीवल एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इंक्लूडेड होता है। IVF की कॉस्ट किन बातों पर डिपेंड करती है, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी कि IVF में सबसे बड़ा और वेरिएबल खर्चा इंजेक्शन और मेडिसिन का होता है। यंग पेशेंट्स में कम इंजेक्शन लगते हैं, जबकि लो ओवेरियन रिजर्व या एडवांस्ड एज में ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मेडिसिन का खर्चा टोटल बिल का 25-40% तक हो सकता है। लैबोरेटरी प्रोसीजर्स जैसे कि एग रिट्रीवल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो ट्रांसफर IVF का कोर हिस्सा है और इनका कॉस्ट 30-40% तक हो सकता है। एडवांस टेक्निक जैसे कि ICSI, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, अगर ये सब किए जाएं तो टोटल कॉस्ट में 10-30% उससे ज्यादा हो सकता है। डोनर एग्स, डोनर स्पर्म तो ट्रीटमेंट का खर्चा काफी बढ़ा देते हैं। कुछ कपल्स को 2-3 साइकिल्स की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ओवरऑल खर्चा बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। IVF सेंटर से रिटर्न कॉस्ट एस्टीमेट जरूर लें, जाने कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्स्ट्रा चार्जेबल है। सबकी ब्लड टेस्ट, स्कैन की अलग कॉस्ट के बारे में पहले से ही जानकारी ले लें। अगर जरूरत हो तो EMI या फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में पूछें। सिर्फ कम कॉस्ट देखकर क्लिनिक ना चुनें। एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्वालिटी IVF लैब, ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। IVF एक इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि एक हेल्दी बेबी के गोल के लिए होता है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया है इससे सिर्फ यही समझ आता है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब इतना ही जरूरी है जितना कि एक ट्रीटमेंट खुद से। सो जितने भी लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर ही आगे बढ़े। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। डॉक्टर, आज हम IVF को लेकर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डर भी आते हैं जब हम इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी परेशान है सेफ्टी को लेकर। और साथ ही ये भी बताइए कि वाकई IVF एक सेफ फैक्टर है, इस ट्रीटमेंट के दौरान या बाद में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: IVF जनरली एक सेफ और एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। आज तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे IVF से जन्म ले चुके हैं। 95-90% फीमेल्स IVF ट्रीटमेंट को बिना किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के सेफली कंप्लीट कर लेती हैं। पहले IVF में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम एक कॉमन कंसर्न था, आजकल अच्छे इंजेक्शंस की वजह से यह रिस्क भी बहुत कम हो गया है। पहले एक से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर्स किए जाते थे, इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ता था। आजकल ज्यादातर सेंटर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रेफर करते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी में मेजर बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क लगभग 2-3% होता है। IVF प्रेगनेंसी में यह लगभग 3-4% होता है, जो अक्सर इनफर्टिलिटी के कॉज या पेरेंट्स की एज की वजह से होता है, ना कि IVF प्रोसीजर की वजह से। IVF के दौरान या बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? IVF इंजेक्शंस और मेडिसिंस बिल्कुल डॉक्टर के शेड्यूल के हिसाब से लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट, एडवोकेट प्रोटीन, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल से तो बिल्कुल दूर रहें। रोज की नॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादातर सेफ होती हैं, एक्सर्शन से बचें। फीवर, पेन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने से अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है। सही काउंसलिंग, एक्सपीरियंस टीम और प्रॉपर फॉलोअप के साथ IVF एक सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन है।
0: जी बिल्कुल सही डॉक्टर, और बहुत ही अच्छी बात आज आपने बताई है। जब ट्रीटमेंट एक्सपर्ट की गाइडेंस में हो और साथ ही हर कपल सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही पॉजिटिविटी भी आती है। इसी के साथ डॉक्टर, बहुत सारे मिथ हैं IVF से जुड़े जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ ना IVF की, तो बहुत सारे मिथ भी आते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन मिथ ये है कि IVF के जरिए आप अपनी मनपसंद जेंडर के बच्चे चूज कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बारे में अगर हम इंडिया के लॉ की बात करें तो मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं?
1: यह है IVF से सबसे जुड़ा सबसे कॉमन मिथ में से एक है। IVF का मेन पर्पस जो होता है वो हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करना है, ना कि बेबी का जेंडर चूज करना। साइंटिफिकली अगर एम्ब्रियो की प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाए तो एम्ब्रियो के सेक्स क्रोमोसोम्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में PCPNDT एक्ट के तहत IVF के दौरान सेक्स सिलेक्शन 100% इलीगल है। सिर्फ जेंडर जानने या जेंडर चूज करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करना कानूनी रूप से मना है। रेयर मेडिकल सिचुएशंस, जैसे किसी फैमिली में एक्सलिंक जेनेटिक डिजीज का रिस्क ज्यादा हो, तब उससे बचने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग का यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका डिसीजन स्ट्रिक्ट मेडिकल इंडिकेशंस एंड लीगल गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, ना कि पेशेंट की पर्सनल प्रेफरेंस से।
0: डॉक्टर, जिस मिथ के बारे में आज हमने बात की है, इस मिथ को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर बात की जाए ना IVF को लेकर तो लोगों के बीच काफी सारे मिथ थे इस टॉपिक को लेकर। और थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिसनर्स को बताया कि आखिर IVF होता क्या है, क्यों जरूरी है, किस तरह से इस जर्नी में आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही डॉक्टर एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। अब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: कूचा।
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूचा मत मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
0: गिर गया। साले इतने हंसे, तू कूच गया।
2: अब पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: सब ठीक चल रहा था, या हम ऐसा सोचते थे। उन पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जो हमारी जिंदगी को हमेशा
1: के लिए बदलने वाले। इशाना के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं IVF को लेकर, जान रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो डॉक्टर ये बताइए, अगर किसी कपल का IVF साइकिल सक्सेसफुल ना हो तो उसके पीछे आम तौर पर क्या वजह हो सकती है, साथ ही ऐसे कपल को आप इमोशनली और मेडिकली क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: एक IVF साइकिल फेल होना इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत से कपल्स दूसरे या तीसरे साइकिल में सक्सेस अचीव करते हैं। IVF फेलियर का सबसे बड़ा कारण एम्ब्रियो में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होता है। उम्र बढ़ने के साथ एग की क्वालिटी कम होती है, जिससे क्रोमोसोमल एरर्स बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो दिखने में अच्छा हो सकता है लेकिन जेनेटिकली नॉर्मल ना हो। भले ही एम्ब्रियो अच्छा हो लेकिन कभी कभी वह सक्सेसफुली इम्प्लांट नहीं हो पाता। हर IVF फेलियर के बाद दूसरा केस रीवैल्यूएट किया जाता है। सब फैक्टर्स, एग, स्पर्म क्वालिटी, फर्टिलाइजेशन रेट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एम्ब्रियो ग्रेडिंग, डेवलपमेंट, दोबारा स्टडी किए जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल में चेंजेस किए जाते हैं। IVF फेलियर इमोशनली बहुत टफ हो सकता है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिटेल डिस्कशन करें कि IVF फेलियर का पॉसिबल रीजन क्या था और अगले साइकिल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ ज्यादातर कपल्स हैप्पीली पेरेंटहुड अचीव करते हैं।
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आज अगर बात करें तो आपने IVF से जुड़े बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया है और साथ ही उम्मीद है कि आज की बातचीत ने हमारे लिसनर को IVF को लेकर काफी क्लैरिटी दी होगी और साथ ही जो कपल इस जर्नी से गुजर रहे हैं उन्हें भी सही जानकारी और उम्मीद मिली होगी। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा, आज आप आए और आपने अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस से इस सेशन को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाया। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हाय, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। आज की जनरेशन का ना एक मंत्र बन गया है, हसल हार्ड नो डेज ऑफ। लेकिन क्या हर वक्त बिजी रहना ही सक्सेस है, या कहीं ना कहीं इस रेस में हम अपनी मेंटल पीस खो रहे हैं? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केया, जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होने के साथ साथ कॉर्पोरेट एंड स्पिरिचुअल काउंसलर और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हैं। वेलकम मैम।
1: थैंक यू।
0: मैम, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल ना हर जगह हसल हार्ड नो डेज ऑफ जैसे मैसेजेस देखने को मिलते हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि एक्चुअली में हसल कल्चर है क्या, और क्या ये हर किसी के लिए हेल्दी है?
1: हसल कल्चर समझते हैं होता क्या है।
0: जी,
1: जब हम आदमियों की बात करते हैं, मेन का सिंपल बायोलॉजी है 24 घंटे का साइकिल।
0: बिल्कुल।
1: दे राइज एंड शाइन, दे डू देयर वर्क और फिर वो सोने चले जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: विमेन का साइकिल इज वेरी डिफरेंट, इट इज लाइक अ मून। जैसे चंद्रमा होता है ना, इट इज नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मंथ। हर 24 दिन का भी अगर उसका साइकिल होता है, 24 to 28 days, उसका साइकिल अलग होता है। सेम गोज फॉर विमेन। सो जब हम औरतों से वो 20 एक्सपेक्ट किया जाता है, वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट। आप देखोगे एवरी वुमन हु इज क्लोज टू हर मेंस्ट्रुएशन, That woman is just pushing herself, उसको खींच रही है।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, and this is a normal biology of a any 23-year-old boy or a girl.
0: जी।
1: वो अलग है, and that's why I say कि this is not healthy for everyone. Every woman जो इस समय corporate में है, more than 60-70 women are suffering from PCOD.
0: बिल्कुल।
1: अगर आप PCOD समझो, that is heightened masculine energy in a woman. And these women, इन औरतों का अगर आप relationships देखो with their fathers, with their brothers or with their partners is not healthy.
0: जी।
1: मतलब इनका घर का environment भी healthy नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: जो इनका masculinity और trigger कर रहा है। So no, I'm so sorry to say, this is not healthy.
0: जी।
1: But choice हमारे हाथ में है, how to make this healthy.
0: बिल्कुल।
1: Why? Because आज आप corporate में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अपने financial independence के लिए जा रहे हो। Financial independence needs to help you find your purpose. आज ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, इसलिए मैंने कॉर्पोरेट चूज किया। कॉर्पोरेट गिव्स मी एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा सैलरी है, उस वजह से आई एम एबल टू हैव अ इंडिपेंडेंस इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में एज अ वुमन कोई डिसीजन नहीं ले रहा।
0: बिल्कुल।
1: इन्फ्लेशन सेकेंड रीजन है कि वुमेन आर वर्किंग, बट प्राइमरी रीजन अगर आप हर लेडी से बात करो तो क्या है, दैट उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटी है।
0: बिल्कुल।
1: दैट इज व्हाई शी इज वर्किंग। हाउ डज शी ट्रांसफॉर्म्स कॉर्पोरेट कल्चर फॉर हरसेल्फ इज नंबर वन, पर्पस ढूंढो। नंबर टू, लर्न टू मेडिटेट।
0: बिल्कुल।
1: जब आप ध्यान करोगे तो आपके आसपास जो भी हो रहा है आप ट्रिगर नहीं होगे।
0: जी।
1: आप ट्रिगर नहीं होगे, आप बेटर भी परफॉर्म करोगे और आप खुद को भी चूज करोगे और आप बाउंड्री भी सेट करोगे।
0: बिल्कुल।
1: 8 घंटे काम करना है, I have other responsibilities at home. I have my child waiting at home. तो मैं क्या करूंगी? I will be able to prioritize my work and stop and make a call कि ये 4 दिन का काम नहीं है. This will take 5 to 8 days.
0: जी.
1: Even though AI है in the market, but what is AI doing? Currently for so many people, बहुत सारे लोगों में fear है.
0: जी.
1: Don't let the fear overpower your capability. How will that help? When you meditate, when you find your purpose.
0: बिल्कुल।
1: So no, short answer, it's not healthy for everyone. Other answer is कि आप उसको खुद के लिए healthy बना सकते हो by making wiser and smarter choices for yourself.
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। And ma'am, आप खुद एक corporate professional हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आज की यंग जनरेशन सक्सेस के प्रेशर में सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है?
1: सबसे बड़ा चीज आ रहा है फियर।
0: जी।
1: इन्फ्लेशन इतना है तो इवन टू गेट अ फोन या फिर खुद का घर आपको ईएमआई पे करनी है।
0: बिल्कुल।
1: जब आप ईएमआई के साइकिल में आ जाते हो तो फिर क्या होता है कि आपका बॉस आपको कुछ भी बोल रहा है या वर्क डिमांड्स कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही है, आपके दिमाग में ये है इफ आई डोंट डू दिस आई विल बी लेट ऑफ टुमारो।
0: जी।
1: अगेन, मैं जानती हूँ एआई है, दैट ऑल्सो टेल्स यू कि एआई के जमाने में मैं खुद पे इतना भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं अपना पर्पस आइडेंटिफाई करूँ। आपका पर्पस कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: टुडे देयर इज अ बिग नीड ऑफ काउंसलर्स, टुडे बिग नीड ऑफ कंपैशनेट पीपल। टुडे आप काउंसलर तब तक बन नहीं सकते जब तक आप कंपैशनेट नहीं हो। तो कॉर्पोरेट है, डोंट लेट कॉर्पोरेट फोर्स यू इनटू प्रेशर ऑफ ओनली वर्क एंड नॉट थिंक अबाउट योरसेल्फ.
0: बिल्कुल.
1: यू स्टिल हैव सैटरडे संडेज. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. कुछ पढ़ो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है. इवन इफ पोएट्री है, आई कैन नेवर गिव यू दैट पोएट्री. नहीं दे पाएगी. नहीं दे पाएगी. वो दैट इज अ ह्यूमन एफर्ट. दैट्स योर ब्यूटी. दैट्स वो आपकी जर्नी का ब्यूटी है जो आप उसको क्रिएट करके बाहर ला पा रहे हो. देयर लॉट ऑफ स्टोरी टेलर्स आउट देयर. देयर लॉट ऑफ हीलर्स आउट देयर. बहुत लोग पैशनेट हैं अबाउट हीलिंग. दे लर्न डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज एंड देयर जर्नी ऑल्सो समटाइम्स उनको पुश करती है कि मुझे, मैं बस इतनी परेशान हूँ कभी कॉर्पोरेट की वजह से, कभी फैमिली की वजह से, कभी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से, दैट आई want my answers.
0: जी.
1: तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी स्विच करते हैं. एंड आई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल हीलर्स राइट नाउ आउट इन द वर्ल्ड जो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसके अलावा भी उनका सर्विस वर्क इतना है.
0: बिल्कुल.
1: इतना ज्यादा सर्विस वर्क है. जस्ट बाय देयर सर्विस वर्क द वर्ल्ड इज हीलिंग.
0: जी बिल्कुल.
1: सो व्हेन यू फाइंड योर पर्पस, एनीवेज वो एक सर्विस में कन्वर्ट होता है. और जब आप कोई सर्विस देते हो, यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू.
0: बिल्कुल.
1: सो ऑपोजिट ऑफ फियर क्या है यहाँ पे? इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, इट्स सर्विस.
0: जी.
1: एंड सर्विस ऑफ एनीथिंग दैट यू गुड एट. यू गुड एट लिसनिंग टू पीपल. यू गुड एट बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल. पिक आउट 2 hours a day कि मैं 2 दिन लोगों के बस बैठूंगा और लोगों की सुनूंगा. मे बी आज नीड भी इतनी है कि कोई किसी से बोल के ही They feel very light.
0: जी बिल्कुल.
1: And आपने एक service दिया towards the universe. Corporate में you're making money, you're not finding satisfaction. Something that you're good at, जो आपका service बन जाएगा, you can make money out of it. You can also do it for free. You can find a balance कि मेरे को ऐसे इन लोगों को देना है, ऐसे इन लोगों को देना है, whatever it is. But the day you find your purpose, you give service out of it, उस दिन आपको जो sense of satisfaction feel होगा, आप खुशी खुशी 5 days corporate जाओगे. Probably 6 days भी चले जाओगे, but there will be certain days. Oh, इन दिनों तो this is my day.
0: जी बिल्कुल.
1: ये Saturday Sunday है, ये मैं अपने purpose को ही दूंगा. Find your purpose that gives you more reason to live. Corporate will never give you reason to live.
0: बिल्कुल.
1: That gives you a vicious cycle. EMI salary. उसके beyond, sit with yourself.
0: Okay, बिल्कुल सही बात है.
2: चलिए इसी interesting discussion को थोड़ी देर में आगे बढ़ाएंगे. ब्रेक के बाद बात करेंगे बर्नआउट, प्रोडक्टिविटी गिल्ट और सक्सेस की असली डेफिनेशन की. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।
1: मीठी लस्सी तो पीता।
2: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
3: बाबा, बाबा।
2: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
4: और आगे
2: याद रखिए हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
5: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केया। बात हो रही है हसल कल्चर के उस पहलू की जिसके बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते। माम, एक इंसान कैसे पहचाने कि वो एम्बिशियस है या बर्नआउट का शिकार हो चुका है, और इसके कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए?
1: नींद आनी बंद हो जाती है या सुबह उठने का मन नहीं करता, दैट्स द फर्स्ट साइन। वेरी सिंपल, बट एनीथिंग दैट इज बर्निंग यू आउट, वाकई नींद सबसे पहले इम्पैक्ट होती है। यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग, आपको अच्छी नींद नहीं आती है। दूसरा, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी चला जाता है, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट चला जाता है। क्रिएटिविटी एंड बेसिकली बर्नआउट, अगेन इट्स एग्जॉशन, इट्स फियर। आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप विदाउट, जैसे आप सुबह ब्रश करो, आपको नहीं सोचना ना हाथ कैसे चलाने।
0: बिल्कुल।
1: सो बर्नआउट लुक्स वेरी सिमिलर टू दिस, कि आप बस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यू डोंट नो, बट वेन यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर द हेक ऑफ डूइंग, तो क्या है कि आपका सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इट्स नॉट बीइंग यूटिलाइज ना, वो चला जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। सो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट सप्रेस हो जाता है, आपका कुछ करने का ही मन नहीं करता, क्या खाना है कुछ भी बना लो। एंड यू नो, अपना गुड़गांव नोएडा में देखो, देयर इज दिस कॉर्पोरेट कल्चर कि फ्राइडे को ऑफिस खत्म करके हम लोग वो फलाना बार जाएंगे, वीकेंड प्लान्स। ऑफ कोर्स डोंट ड्रिंक योर सेल्फ टू द पॉइंट कि आपको नेक्स्ट डे याद ही नहीं है। सो दैट इज बहुत सारे लोगों के लिए बस वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, वेदर नॉट थिंकिंग एनीथिंग।
0: बिल्कुल।
1: सो वॉट इफ यू आर एबल टू शिफ्ट इट, सो बर्नआउट विल नॉट वॉन्ट यू टू डू एनीथिंग, यू जस्ट फंक्शन लाइक अ रोबोट। एंड इफ यू आर फंक्शनिंग लाइक अ रोबोट कि पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, इट्स अ बर्नआउट। वेरी सिंपल वे, इग्नोर बर्नआउट नहीं करना चाहिए।
0: ओके।
1: बिकॉज वेन यू आर इग्नोरिंग बर्नआउट एज अ वुमन, यू आर डेवलपिंग साइंस ऑफ पीसीओडी विच आर एग्रीवेटिंग विद टाइम। इट्स नॉट जस्ट पीसीओडी एनीमोर, यू आर लूजिंग योर हेयर, यू आर लूजिंग योर सेंस ऑफ सेल्फ, आपका एम्बिशन लूज हो रहा है। समवेयर देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जो मैं देखती हूँ, दे आर डूइंग ग्रेट आर कॉर्पोरेट, बहुत बढ़िया चल रहा है, यू नो मीटिंग्स बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल 9 to 9 दे आर वर्किंग 12 hours एंड दे आर कमिंग होम टिल 10-11, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर फैमिली because their feminine is not in that creative place. Wo happy nahi ho pa rahi hai, wo expressive nahi ho pa rahi hai, they are just functioning because the corporate requires them to function.
0: Bilkul.
1: So again, agar main sirf women ki baat karu, I'm not saying corporate is bad, giving 12 hours give 12 hours, but when you step out of your office aapke andar wo excitement hona chahiye. Agar wo excitement nahi hai to wo burnout hai, and corporate without a happy life is nothing.
0: बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत से लोग रेस्ट करते वक्त भी गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, तो इस प्रोडक्टिविटी गिल्ट के पीछे क्या वजह हो सकती है, और अगर एक्चुअल में ये गिल्ट है तो इससे निकला कैसे जा सकता है?
1: इसमें मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को ब्लेम करूंगी
0: जी
1: क्योंकि हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग अगर आप देखो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दीवारें ताक रहे हो, तो वो प्रोडक्टिविटी गिल्ट नहीं है, वो बेसिकली कंडीशनिंग गिल्ट है।
0: ओके।
1: सो सिंस चाइल्डहुड हमारा माइंडसेट ही हो गया है, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। इतने सारे लोग हैं, जब हम उनको मेडिटेशन सिखाते हैं तो बोलते हैं कि हम 2-2 घंटा मेडिटेशन करने नहीं बैठ सकते।
0: बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि मैं 2 घंटा मैं आईज क्लोज करके कैसे वेस्ट करूं? मैं तो रात को 7-8 घंटे सोए रहा हूं ना, आई कैन नॉट स्लीप मेडिटेट एंड वेस्ट माय टाइम फॉर 2 आवर्स। बट आपको ये समझना पड़ेगा, आज यू आर इन योर 30s, आप जॉब कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, टिल योर 60s आल्सो यू आर प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव, आप इतने प्रोडक्टिव हो कॉर्पोरेट के लिए दैट यू डोंट हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर बॉडी। एक टाइम आएगा आपके पास आसपास कोई नहीं है, एक टाइम आएगा आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है, तब आपको खुद के साथ बैठना है। अगर आज वो हैबिट नहीं बिल्ड करोगे खुद के साथ बैठने की, 60s में बैठ पाओगे? तब वी विल ब्लेम आवर चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे, पड़ोसी, क्रैंकी ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्यों बनना है? वो क्रैंकी ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने हसल कल्चर के हिसाब से हसल कर रहे थे बिकॉज इट वॉज नीड, आज भी नीड है। But choosing to sit with yourself is a choice which you have to make. Up by 60s, life आपको force करके वो ability दे, and then you cannot sit with yourself. Or now in your 20s, 30s, you learn to sit with yourself एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इट फील्स लाइक टू बी मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पर्पस हर इंसान का इस पृथ्वी पे आने का कुछ है, वो सिर्फ कॉर्पोरेट से पैसा कमाना नहीं है, इट्स टू अंडरस्टैंड हु एम आई, वो मैं कैसे समझूंगा जब मैं खुद के साथ बैठूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ है कि कामयाबी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सोशल मीडिया प्रेशर और इनर पीस के बैलेंस की। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। मैम, सोशल मीडिया पर हर रोज दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन और प्रेशर बढ़ता है, तो इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आप क्या प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगी?
1: टू थिंग्स, सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ क्लैरिटी। मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ?
0: जी,
1: अगर मैं घर खरीद रहा हूँ तो मेरी नीड क्या है टू बाय अ होम, एंड इफ मेरे को ये क्लैरिटी है कि मैं अपना घर क्यों खरीद रहा हूँ, तो मेरे घर में जितने भी फ्लोर्स हों, जितने भी कमरे हों, इट डजंट मैटर कि किसी और के पास कितने घर है या कितने भी फ्लोर्स हों, जितने भी कमरे हों, इट डजंट मैटर कि किसी और के पास कितने घर है या कितने फ्लोर्स है। सेम गोज फॉर अ कार एंड अ फोन। मेरा सेंस ऑफ पर्पस टू गेट एनीथिंग इज नीड्स टू बी क्लियर इन माई हेड। आई नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ। सो काम हो गया मेरा पर्पस।

0: और क्यों कर रहा हूँ मेरी क्लैरिटी हो गई। जिस दिन मेरे पास वो क्लैरिटी है, किसी के पास मुझसे बहुत बड़ा घर हो सकता है और किसी के पास मुझसे बहुत छोटी गाड़ी हो सकती है, डजंट मैटर टू मी। मैं खुश हूँ अपने डिसीजन में, मेरी सराउंडिंग खुश है मेरे डिसीजन में, दैट्स द ओनली थिंग मैटर्स, बिकॉज मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कल फॉर 30 इयर्स आई वॉज लिविंग ऑन रेंट, आज मैंने घर लिया है, मैं अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ विद माई पेरेंट्स, वी आर ऑल लिविंग टूगेदर इन अपना घर। ये मेरे लिए जो अचीवमेंट है, वो जो 20 इयर्स से अपने खुद के घर में रह रहे थे, टुडे दे आर शिफ्टिंग इन अ न्यू होम, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट से बहुत डिफरेंट है। एंड मेरे को अपने सेंस ऑफ अचीवमेंट की क्लैरिटी है, तो क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्लैरिटी एंड पर्पस, एंड आई एम वेरी हैप्पी।
1: बिल्कुल सही बात है मैम। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आकाशिक रीडिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग जर्नीज लगती हैं। तो आपके हिसाब से सक्सेस और इनर पीस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है?
0: वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
1: थैंक यू।
0: बट कॉर्पोरेट, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी के पास सेंस ऑफ पर्पस भी नहीं है या लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना आपको नहीं पता है, कॉर्पोरेट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और फाइनेंशियल एड भी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, कॉर्पोरेट में अपना जर्नी स्टार्ट करो। बट अगर लाइफ में कंफ्यूज हो करना क्या है, तो कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मे बी और एन आर्टिस्ट, मे बी और अ हीलर, मे बी और अ डांसर, बट जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए ना, उसको कंटिन्यू करना, एक्सप्लोर करना। मेरे लिए मेरी जर्नी में मुझे समझ में आया हीलिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्टेड टू लर्न हीलिंग, मैं समझना चाहती थी कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई यूज टू मेक मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड आई यूज टू इन्वेस्ट इन कोर्सेज इन न्यू बुक्स। आई हैव माई खुद का घर का लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी बुक्स है, आई हैव लॉट ऑफ मास्टर्स, ओशो, पथरी जी एंड रॉबर्ट श्वार्ट्ज़, और एंडलेस है मेरे पास जो लिस्ट है इतने सारे ऑथर्स की जिनसे मैंने सीखा है। सो दे आर माई मेंटर्स इन देयर ओन वे। बट मेरे लिए सक्सेस वो है
1: जी,
0: ये जो मैंने चीजें सीखी थ्रू दीज ऑथर्स, थ्रू दीज मेंटर्स, थ्रू दीज मास्टर्स, मेरे लिए वो सक्सेस है, ये मेरी लर्निंग्स है। बट मैं ये सब कर नहीं पाती अगर मेरे पास कॉर्पोरेट नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: सो कॉर्पोरेट मेड मी केपेबल टू बी व्हाट आई वांटेड टू बी।
1: जी।
0: अब इसमें घूम फिर के मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आपका सेंस ऑफ सक्सेस का मीनिंग क्या है।
1: जी।
0: इट कुड बी मेकिंग लॉट ऑफ मनी, कि भैया एट द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, गुड। हाउ डू यू वॉन्ट टू मेक दैट मनी, फिगर दैट आउट। बट एक पाथ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है, मुझे ऐसे करना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर हैप्पी बीइंग मैनेजर्स, क्योंकि उनको अपने नीचे यंग बच्चे ट्रेन करने को मिलते हैं एंड वो उन बच्चों को वो रास्ता दिखा पाते कि कॉर्पोरेट में कैसे चलना है, कैसे बनना है। एंड दोज किड्स ऑल्सो इन देयर अर्ली ट्वेंटीज, वो आज भी अब 30s के हो जाएंगे, 40s के हो जाएंगे, बट वो ना पहला मैनेजर जरूर याद रखते हैं कि अगर मेरे पास वो मैनेजर नहीं होता ना, तो मुझे कॉर्पोरेट में लीड करना नहीं आता। इमेजिन हाउ पावरफुल देयर रोल इज इन द कॉर्पोरेट इटसेल्फ, उन्होंने एक सेंस ऑफ पर्पस बनाया। तो पॉलिटिक्स में पढ़ना ना पढ़ना इट्स योर कॉल, बट अगेन अंडरस्टैंड, आप जैसे घर में हो वैसे ही आप ऑफिस में हो।
1: जी,
0: ठीक है। सो अगर कोई बहुत टॉक्सिक आपको अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट में मिला है, तो उसका घर का भी एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं है। आप अगर घर में भी बाउंड्री बनाने में स्ट्रगल करते हो, तो आपको कॉर्पोरेट में भी वो बाउंड्री बनाने में स्ट्रगल होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इरिस्पेक्टिव यू हैव टू चूज टू बी इन अ बेटर स्टेट।
1: बिल्कुल।
0: एंड व्हेन यू डू दैट चॉइस, सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो इरिस्पेक्टिव, इट डजंट मैटर दैट हाउ यू आर मेकिंग मनी, वॉट मैटर्स इज हाउ हैप्पीली यू आर मेकिंग मनी। सो वो कॉन्शियसली अपना वर्क करते रहो, तो आपको अपने पाथ की क्लैरिटी होती है। एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग आपके पाथ में जो जो था, यू आर सक्सेसफुल।
1: बिल्कुल।
0: तो अपना सक्सेस का डेफिनेशन, इट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, डोंट कंपेयर।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेंगे आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। सुनते रहिए नया नजरिया, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केया। मैम, अगर इस वक्त कोई स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड, कंफ्यूज्ड या बर्नआउट फील कर रहा हो, तो वो आज से कौन से सिंपल स्टेप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है?
1: ये आपने ना बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी बच्चों के कॉलेज एडमिशन्स का भी टाइम है।
0: बिल्कुल।
1: सो किड्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, सीएस लें, इलेक्ट्रिकल ले, मैकेनिकल लेनी चाहिए क्या, एआई का इतना जमाना है, एंड दिस इज जस्ट द इंजीनियरिंग पार्ट। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मेडिकल फील्ड में तो बच्चों का और भी हाइटेंड स्ट्रगल है, एंड बर्नआउट भी है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है बहुत घरों में, सिर्फ किसी फील्ड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो उस फील्ड में जाएं। वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उन्हें पता नहीं है।
0: पेरेंट्स भी इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने ये करा है तो आप भी यही करिए,
1: सेफ चॉइस है
0: जी।
1: इंजीनियर बन जाओगे तो जॉब लग जाएगी।
0: एग्जैक्टली।
1: बाहर बहुत इंडस्ट्रीज है। मेरा सबको एक सजेशन, सिंपल एक सजेशन है, मेडिटेट एज मच एज यू कैन, एज लिटिल एज यू कैन, एट एनी एज। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। माई ब्रदर 18 साल का लड़का है, वो भी अभी कॉलेज फिगर आउट कर रहा है। ही हैज 2-3 ऑप्शंस।
0: जी।
1: हम जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, कैंपस विजिट करते हैं, मैं उसके चेहरे पे कंफ्यूजन देखती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के फेस पे कंफ्यूजन देखती हूँ। माय ओनली रोल इन माय हाउस राइट नाउ इज, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई 30 मिनट्स मेडिटेट करने बैठ जाए, लेट द बेस्ट डिसीजन कम टू मी, लेट मी वॉक टूवर्ड्स द बेस्ट डिसीजन विद क्लैरिटी।
0: बिल्कुल।
1: आपको क्लैरिटी कहाँ से आएगा, आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है? मेरी लाइफ में यंगर स्टेज पे मेडिटेशन नहीं था। जब मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया तब मुझे पता था कि मुझे हीलिंग के पाथ से जुड़ना है, मुझे हीलिंग के थ्रू लोगों को सर्विस देनी है। आज भी आई काउंसिल लॉट ऑफ वुमेन हु डू नॉट हैव द अफोर्डेबिलिटी, बट अगर वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है तो मैं उनको 3 चीजें सिखा के भेजती हूँ। एक, द की नोट दैट द कॉन्वर्सेशन कैन टेक फ्रॉम। 2, हाउ टू डू मेडिटेशन। 3, उनकी लाइफ में जो मेजर लाइफ प्रॉब्लम है कौन सी बुक उनको एड करेगी। इससे मैंने क्या किया, सामने वाले को इंडिपेंडेंट बना दिया।
0: बिल्कुल।
1: अब वो अपने पेन के साथ, उसको इट विल नॉट वेयर इट लाइक अ विक्टिम, नॉट लाइक अ पेन कि मैं इसका क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। जो बर्नआउट में है वो कंफ्यूज्ड है। जिस बच्चे को नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, या फैमिली को नहीं पता उसे कहाँ जाना है, वो कंफ्यूज्ड है। इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। व्हाट्स नॉट ओके इज टू स्टे इन कंफ्यूजन एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक चीज कर लो, मेडिटेट।
0: जी।
1: द आंसर्स विल कम टू यू, द क्लैरिटी विल कम टू यू, एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस बिकॉज यू विल वॉक क्लोजर टू योर पर्पस। You'll make this world a better place through your purpose.
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। And ma'am, आप हमारे listeners के लिए क्या message देना चाहेंगी?
1: Listeners के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, boy, girl, man, woman, any age, any stage, find what makes you happy.
0: बिल्कुल।
1: हम जितने बड़े होते जाते हैं ना, हम happiness से तो दूर होते जाते हैं, हम खुशी से तो दूर होते हैं ना, हम प्यार के emotion से दूर होते हैं। Everything, everybody is capable of love. Like you mentioned in the beginning of our conversation, जानवर में भी प्यार मिल जाता है
0: जी,
1: और वहाँ खुशी भी मिल जाती है। जहाँ प्यार है वहाँ खुशी ऑटोमेटिकली है। बट अपनी खुशी ढूंढो, वो आर्ट में है, डांस में है, किसी भी एज और स्टेज में है। लिमिट मत करो कि अरे मेरी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी ड्यूटीज है, मेरी खुशी कहाँ है, मैं कैसे ढूंढू, मेरे पे टाइम ही नहीं है। Give yourself the right words. I want you to take away today कि मेरे शब्दों में बहुत ताकत है, मैं खुद को क्या बोल रहा हूँ उसमें बहुत ताकत है, मेरी लाइफ वो है जो मेरे शब्द हैं। आज सिट विद योर सेल्फ एंड थिंक कि मैंने क्या क्या सोचा, मेरी लाइफ में उससे क्या क्या क्रिएट हुआ है, तो आज मैं क्या क्या सोचना चाहता हूँ, और उस पर एडिक हो जाओ। यही सोचूंगा, बी डिल्यूशनल, लेट द वर्ल्ड टेल यू योर डिल्यूशनल।
0: बिल्कुल।
1: बी डिल्यूशनल एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। दैट्स ओनली।
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू फॉर योर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड पलक यू हैव बहुत वाइब्रेंट, लाइट, वगैरह बिल्कुल लाइटफुल एनर्जी है आपकी।
0: थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों याद रखिए, सक्सेस तभी मीनिंगफुल लगती है जब उसके साथ सुकून भी हो। अपने गोल्स का पीछा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और इनर पीस की कीमत पर नहीं। मैं हूँ आरजे पलक, आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे नया नजरिया के अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी नई कहानी लिखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी लेखक मौजूद है जो सिर्फ एक लेखक नहीं, एक एडवोकेट भी हैं और एक माँ भी हैं, जिन्होंने अपनी किताब फीनिक्स अनबाउंड में दर्द, हार, धोखा, सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एक गहरी और सच्ची जर्नी को शब्दों में उतारा है। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में, और सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ आज खास मुलाकात में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा। मैम, तहे दिल से स्वागत है पूरी रेडियो महारानी की टीम की तरफ से।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी के साथ साथ मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप एक ऑथर भी हैं, और सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ मैम एक आरजे भी रह चुकी है फॉर द पास्ट 18 ईयर्स, एंड साथ ही साथ एडवोकेट भी है। तो मैम इतने अलग अलग रोल्स और साथ में माँ भी हैं तो इतने सारे अलग अलग रोल्स कैसे बैलेंस करती हैं आप?
1: मुझे लगता है योगा बहुत हेल्प करता है। मोमेंट यू स्टार्ट स्टॉप थिंकिंग
0: जी,
1: देन आई थिंक लाइफ बिगिंस।
0: ओके,
1: हमारी प्रॉब्लम ये है हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो एंड योगा बहुत हेल्प कर देते हैं। देखो, हमारी जिम्मेदारियां तो कभी कम नहीं होगी,
0: बिल्कुल,
1: और निभानी भी पड़ेगी
0: जी,
1: सो टाइम भी कम नहीं होगा ना इंक्रीज होगा
0: जी।
1: सो व्हाट यू कैन डू इज इंक्रीज योर एनर्जी, व्हिच आई फील योगा प्राणायाम हेल्प्स अ लॉट। कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक, डिसिप्लिन्ड, उससे बहुत फर्क पड़ता है।
0: तो आप मेडिटेशन भी करते हैं साथ में?
1: मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ।
0: ओके ओके ओके, तो मैम सब चीज एक साथ बता रही है, और मैम बता रही है कि आप लोग अगर योगा करोगे तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को अपनी लाइफ में। और मैम इसी के साथ साथ मैं सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ कि मैम का जो लॉ फर्म है वो दुबई में है। तो मैम ये आप बीइंग बेस्ड इन फरीदाबाद और दुबई आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये चीज कैसे हैंडल करती हैं आप?
1: वही है, जैसे मैंने बताया, कोई ऑप्शन तो है नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वर्क मैटर्स। और सिंस हमारे सारे काम जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के हैं, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में है, तो इसीलिए जाना तो पड़ता ही है, बट इट इज ऑलवेज एडवेंचरस
0: जी। तो मैम एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि मैंने सभी को बताया कि आप आरजे भी रही हैं और एडवोकेट तो आप हैं, तो कोर्ट रूम और रेडियो स्टूडियो दोनों में आवाज ही पहचान होती है, तो आपके लिए दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है?
1: आई थिंक कोर्ट में आरजेइंग नहीं कर सकते और रेडियो में यू कैन बी योरसेल्फ।
0: ओके, रेडियो में तो हम लोग अपने दिल की बात खुल के बोल सकते
1: हैं। हाँ, वहाँ पे ना दिल की बात नहीं खुल के बोल सकते, वहाँ पे जो क्लाइंट चाहते हैं वही बोल सकते हैं, जो जज सुनना चाहते हैं वही बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ साथ सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ मैम ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फीनिक्स अनबाउंड, मगर करेंगे उसके बारे में बात मगर इस छोटे से गाने के बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा।

0: एक शब्द होता है फीनिक्स, जो कि एक काल्पनिक पक्षी है जो ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी में मिलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब फीनिक्स बूढ़ा हो जाता है तो वो आग में जलकर राख हो जाता है और उसी राख से एक नया फीनिक्स जन्म लेता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं खास मुलाकात। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा। और फीनिक्स की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैम इज एन ऑथर ऑफ द बुक फीनिक्स अनबाउंड। मैम फीनिक्स ही क्यों?
1: क्योंकि एज यू एक्सप्लेन्ड कि इट्स अ बर्ड दैट राइजेस फ्रॉम इट्स ओन एशेस।
0: जी,
1: तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं विच इज एक्चुअली सेल्फ बर्निंग, एंड आई मेड मिस्टेक्स, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो उन्हीं मिस्टेक्स से जो जो चीजें मैंने सीखी है और मैं कैसे उससे निकली हूँ, ये बुक उसी को दर्शाती है।
0: या तो मैम, जैसे फीनिक्स की बात जब हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी सभी लिसनर्स को कि फीनिक्स आग में जलकर राख बन जाता है और उसी राख से फिर से एक नया फीनिक्स जन्म लेता है। तो ये तो शायद हमारे हमारी हिंदू हिस्ट्री में भी लिखा पड़ा है कि अंत ही आरंभ है।
1: यस,
0: अंत आरंभ।
1: यस।
0: तो इसी के साथ साथ मैं सारे लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ कि मैम सिर्फ एक ऑथर ही नहीं है, ऑथर के साथ ही एडवोकेट भी हैं, आरजे भी हैं, योगा टीचर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर भी हैं। तो मैम हाउ मीन्स कैसे इतना सारा टैलेंट एक साथ आप इकट्ठा करके बैठे हैं? और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैम ने ये सब अभी नहीं सीखा, ये बहुत टाइम से सीख रखा है। तो मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एडवोकेट से योगा में कैसे गए?
1: आई थिंक एडवोकेसी या कोई भी प्रोफेशन ले लो,
0: हाँ जी,
1: योगा जो है ना, इट मेक्स यू सेंटर्ड, फोकस्ड, क्लियर, यू नो, यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इसीलिए इट बिकेम, सब कुछ हैंडल करने के लिए वो क्षमता भी चाहिए, इमोशनल रेजिलियंस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इट वेंट इन टू योगा।
0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैम ने जो बुक लिखी है फीनिक्स अनबाउंड, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्होंने अपना रुख बताया था। तो मैम स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आपका रुख बढ़ा?
1: तो एक अननोन फोर्स हमेशा हमें हमारे साथ है।
0: बिल्कुल,
1: आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट। मुझे बस यही लगता है कि वो सिर्फ अलग अलग नाम से जाने जाते
0: जी।
1: हैं। सम पीपल बिलीव इन साई बाबा, सम इन अल्लाह, सम इन राम, सम इन कृष्णा, शिवा, सो इट्स डिफरेंट नेम्स
0: जी,
1: लेकिन कोई है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसको बस अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो प्रेजेंस जो है, जब लाइफ में ना स्ट्रगल, दुख, ट्रॉमा, कुछ भी एक्सपीरियंस करते ना, तब सबसे ज्यादा फील होती है कि कोई तो साथ खड़ा है। इट्स एन इनविजिबल फोर्स, तो दैट फोर्स इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी।
0: ओके,
1: अदरवाइज आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, बट देयर इज वन डिवाइन फोर्स।
0: सो देयर इज वन डिवाइन फोर्स व्हिच वी ऑल आर कनेक्टेड टू। और ये बात मैं भी अच्छे से समझता हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बात को जब स्टार्ट किया है तो आगे बात और भी बढ़ेगी, मगर करेंगे इसके बारे में और भी बात, लेकिन इस गाने के बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा, एंड आप सुन रहे हैं खास मुलाकात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: एडवोकेट, ऑथर, आरजे और साथ ही साथ थिएटर आर्टिस्ट, भरतनाट्यम डांसर एंड अगर मैं बोलूं सबसे ऊपर एक माँ और एक विमेन। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और ये सारी तारीफ नहीं थी, ये सारी क्वालिफिकेशंस थी एडवोकेट रूपा की। तो मैम फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच।
0: एंड इसी के साथ तो मैम एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, सारे लिसनर्स के लिए सवाल है और जितने भी फीमेल लिसनर्स हमें सुन रही हैं आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मेल सुन रहे हैं आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स या फिर अगर आप अपनी फैमिली में किसी भी फीमेल को ये चीज़ जरूर बताइएगा। मैम अगर हर वुमेन को सिर्फ एक लीगल राइट पता होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए?
1: एक लीगल, दो बता सकती हूँ
0: जी? बिल्कुल, चार बताइए।
1: थैंक यू सो मच, क्योंकि स्पेशली फॉर वुमेन ना ये जानना बहुत जरूरी है दैट दे कैन नॉट बी कॉल्ड टू एनी पुलिस स्टेशन और एनी प्लेस स्पेशली जहाँ पे पुलिस इंक्वायरी या कुछ रिलेटेड मैटर हो, कोई लीगल केस हो, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एनीवेयर आफ्टर सनसेट।
0: ओके मैम, इसमें मेरा एक सवाल छोटा सा है कि क्या फीमेल ऑफिसर्स भी नहीं बुला सकती?
1: नहीं, फीमेल ऑफिसर अकंपनी कर सकती है।
0: आफ्टर सनसेट
1: वो भी बहुत ही इमरजेंसी वाले केस में हो सकता है, जैसे मर्डर का सस्पेक्ट हो तो फरार होने का डर लग सकता है, तो तब लेके आना, वो भी वारंट के साथ इज एडवाइजेबल बट विद अ लेडी कांस्टेबल और अ लेडी पुलिस ऑफिसर। तो आफ्टर सनसेट दे कैन नॉट बी फोर्स टू गो एनीवेयर इन पुलिस इंक्वायरी और कम टू अ थाना। और दूसरी बात, ये मेरे को बहुत कॉमन यहाँ पे, क्योंकि सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वीमेन भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आफ्टर सनसेट, आफ्टर एंड ऑफ डे जो बोलते हैं ना ईओडी, दैट इज 6 PM के बाद, इट इज एडवाइजेबल किसी लेडी को कॉन्टैक्ट ना करें अंटिल अनलेस इट्स अ वेरी इमरजेंसी मैटर। ऑफिस का अगर कोई मैटर हो वो जो कल में
0: हो
1: सकता है, इट्स बेटर टू पोस्टपोन इट देन कॉलिंग अप अ लेडी आफ्टर 6 PM बिकॉज वो इजिली इफ शी पुट्स अ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इट फॉल्स अंडर इट। तो इवन मेकिंग हर वर्क लेट वो एडवाइजेबल नहीं है।
0: बट काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लॉ फर्म्स तो नहीं बोलूंगा, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ फर्म्स में किसी फीमेल एम्प्लॉय, जस्ट नॉट ओनली फीमेल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को टाइम है मान लीजिए 7 बजे तक का, 10 से 7 उनकी शिफ्ट है एंड काम करते करते उनको 9 बज जाते हैं, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की के फीमेल्स को उनके घर तक ड्रॉप करवाना?
1: यस, इट इज मैंडेटरी टू अरेंज फॉर अ कैब, अ सेफ ड्राइवर, प्रेफरेबली हु इज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी इटसेल्फ।
0: ओके, अगर ऐसा वो फॉलो नहीं करते हैं तो एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है?
1: गॉड फॉरबिड अगर कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है देन इट इज फाइन, बट द फीमेल कैन ऑलवेज अप्रोच द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेल दैट इट इज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, आई कुड हैव डन दैट वर्क एट होम इटसेल्फ। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिले ना, इट इज बेटर टू एडवाइज देम टू वर्क फ्रॉम होम कि ओके यू रीच होम एंड यू डू इट, फिर 11-12 बजे तक काम कर रहे हो, डेडलाइंस होते हैं, सो थोड़ा सा वो सेंसिटिविटी माइंड में रख के काम करना जरूरी है।
0: तो यूं ही सवालों का सिलसिला जारी रहेगा मगर थोड़ी देर बाद, उससे पहले म्यूजिकल ब्रेक आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एडवोकेट रूपा।
2: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जब भी हम एक एडवोकेट की बात करते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, और सवाल ये आता है कि हम लोग कैसे बनेंगे एडवोकेट। और उसी सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा मैम, जो कि एक ऑथर भी हैं, आरजे भी रह चुकी हैं और लॉ फर्म दुबई और इंडिया दोनों में चला रही हैं, और योगा टीचर, न जाने क्या क्या क्वालिफिकेशन मैम के पास है। तो मैम फिर से स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच।
0: एंड मैम एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि आज के यूथ में लॉ को करियर के रूप में आप कैसे देखते हैं?
1: सी, लॉ इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोफेशन। ये ऐसा प्रोफेशन है वेर वी आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग एंड एक्चुअली आर नॉट क्वालिफाइड। देखो, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है तो यू आर बेटर देन अ डॉक्टर, क्योंकि वो प्रूव करना होता है कि कैसे हुआ या सर्जरी में क्या। अगर कोई टेलीकॉम या टेक्नोलॉजी रिलेटेड केस है सो यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कहाँ हुआ डिले। एंड अगर कंस्ट्रक्शन का देखें तो यू आर ऑलरेडी अ सिविल इंजीनियर। सो लॉ एक डाइवर्स प्रोफेशन है, तो जहाँ पे जिनका इंटरेस्ट है ना, दे कैन वर्क टूवर्ड्स इट। सो इसमें काफी प्रैक्टिस एरियाज है। तो इफ द यूथ इज इंटरेस्टेड से फॉर एग्जाम्पल इन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, तो दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर IPR, Intellectual Property Rights. तो अलग अलग प्रैक्टिस एरियाज हैं विच दे कैन एक्सप्लोर।
0: क्या लॉयर का मतलब सिर्फ वो होता है कि हम लोग कोर्ट के बाहर बैठे हैं, या फिर लॉयर का मतलब इससे काफी ज्यादा बड़ा है?
1: अरे बहुत ज्यादा बड़ा है। जो कोर्ट के बाहर बैठे हैं, कोर्ट में बैठे हैं, वो है लिटिगेटर्स
0: जी।
1: और जो बाहर कंपनीज में है और आर्बिट्रेशन में है, सो दे आर not only litigators but they are also corporate lawyers, they are all corporate advisors, I would say. तो it is very vast. मुझे तो लगता है हर department में एक legal professional होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आजकल तो हर एक content creator को भी एक legal advisor चाहिए होता है।
1: Yes, don't fall into controversy.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, what do you think कि क्या opportunities बढ़ रही है?
1: अपॉर्चुनिटीज है अगर एक्सप्लोर किया जाए, दैट इज बियॉन्ड द कोर्ट रूम। कोर्ट में जो है वो लिटिगेटर्स हैं, उससे बियॉन्ड भी लॉ का जो रीच है दैट इज ऑल एनकम्पासिंग।
0: बिल्कुल,
1: इट इज देयर इन एवरी सेक्टर, इन एवरी डिपार्टमेंट। आप ये देख लो, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज भी देख ले, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज हैव टू बी फॉलोड, कंप्लायंसेज हैव टू बी डन, कंपनी सेक्रेटरीज compliances have to be done. Again, there is a need of a lawyer. So it is there everywhere in all departments. Marketing also. Copyright issues.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी listeners मुझे सुन रहे हैं, अगर आप law में अपना career देख रहे हैं तो you should go for it. And इसी के साथ साथ रेडियो महारानी भी सुनते चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं खास मुलाकात में एडवोकेट रूपा जी के साथ, एंड आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले। मगर इसी से पहले अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।
2: कान टूटे बंदे रवे मित्रां की खेल।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रूपा। और मैम सिर्फ एक एडवोकेट नहीं है, जो भी लिसनर्स नए नए जुड़े हैं उन सभी को बता दूं मैम हमारे साथ बैठी हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है फीनिक्स अनबाउंड। मैम इस बुक का आइडिया कब आया था और कब लिखी थी ये बुक?
1: ओके ये जो है ना, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही दैट मैं इंसान हूँ, गलतियाँ होती है, तो मैंने भी गलती करी जिसके वजह से मेरा सब कुछ लूट गया। यू कैन से एक्चुअली आई वाज पुट ऑन द स्ट्रीट। मेरी जो सेविंग्स थी वो चली गई, धोखा हुआ मेरे साथ एज अ लेडी, मेरा घर
0: जी,
1: गाड़ी, आई मीन जो भी आप कमाते हो
0: जी
1: अपनी लाइफ में वो सब कुछ गई, रेप्यूटेशन सब कुछ गई। सो एट द एज ऑफ 40 यू नो व्हेन यू आर ऑन द रोड पेनीलेस,
0: जी
1: आई एम पुटिंग इट वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, हाँ पेनीलेस, तब ऐसे लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप 20 साल के नहीं हो, कॉलेज के नहीं हो कि आज आपने सब कुछ खो दिया है, यू स्टिल हैव कॉन्फिडेंस कि यू कैन रीस्टार्ट। एट 40 यू नो आई रियलाइज्ड एट दैट मोमेंट कि सब खत्म है, मैं खत्म हूँ, मेरे सिर के ऊपर छत नहीं है
0: जी।
1: अब यहाँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो जो मुझे बचाए रखी वो थी मेरी स्किल्स, मेरे जितने भी ये स्किल्स हैं, मेरी जॉब, एवरीथिंग केप्ट मी अलाइव। और वो धीरे धीरे से, मतलब मेरा कर्जा जो है यू कैन से इट वाज अराउंड 10 फोल्ड, माय सैलरी मस्ट हैव बीन दिस मच 1 फोल्ड एंड कर्जा इज 10 फोल्ड, ट्रस्टिंग पीपल निल, तो सब कुछ जो है ना बैकवर्ड ही जा रहा था। तो एट द एज ऑफ 40 टू रीस्टार्ट अगेन, और टच वुड गौरव आई हैव टू से इट हैज बीन रॉकेट, इतनी फास्ट ग्रोथ।
0: कहते हैं कि लाइफ जब पलटती है तो 0 से 100 जाने में टाइम नहीं लगाती
1: एंड अपने ऊपर भरोसा करना। सो आई फील दैट एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो ना यू कैन बी एनीथिंग यू वॉन्ट। Now I am enjoying all the luxuries, touchwood, everything is perfect just because of the change of mind. अपने ऊपर confidence, positive सोचना, negativity को थोड़ा दूर रखना, ये नहीं क्योंकि negativity हर जगह है तो it's very difficult to be unaffected, लेकिन थोड़ा सा उसको at bay रख के अपने ऊपर focus करना, अपनी खुदाई में रहना, जस्ट फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे धीरे धीरे जो है एवरीथिंग हैपेंस द वे यू वांट।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी के साथ साथ आपने अपनी बुक में एक चैप्टर है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस,
1: यस,
0: तो वो चैप्टर लिखते वक्त मतलब आप क्या किसी को माफ करना ज्यादा मुश्किल था या फिर खुद को माफ करना ज्यादा मुश्किल था?
1: मुझे लगता है दोनों, क्योंकि पहले तो दूसरे को माफ करना बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब यू हैव टू, मेरे को तो अ लॉट ऑफ हेल्प केम फ्रॉम योगा, मेडिटेशन एज वेल एज लाइफ कोचिंग। सो मेरी फ्रेंड है प्रियंका मदान, उनकी है पाथ टू हार्मनी, तो वहाँ पे एनरोल करके ना काफ़ी चेंजेस आए लाइफ कोचिंग में। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू, यू नो इट्स नॉट ईजी। तो बहुत एक्सरसाइजेस हुए, जब पंचिंग हुई, रोना धोना कंटिन्यूसली, क्राइंग, लिखना उनके बारे में, लिख के फिर उसको जलाना, बट लास्ट में ना हम रियलाइज करते हैं कि फॉरगिवनेस हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं। बिकॉज आई मीन जस्ट इमेजिन, आपको अगर ये बोला जाए अपनी मुट्ठी हार्ड करके रखो, मेक इट हार्डर,
0: ओके,
1: कीप मेकिंग इट हार्डर, is it easy?
0: हमें ही दर्द होएगा
1: लास्ट। हाँ, and now I tell you forgive, let go. When you release your hand, क्या feeling आती है?
0: बहुत relaxation।
1: So तभी realize होता है forgiveness हम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। It's good for us, क्योंकि वो जो negative chemicals that release in our body, that also stops।
0: जी।
1: जितना आप anger वैंगर रखते हैं अपने अंदर, उतनी ही chemicals निकलती है। तभी तो वो बोलते हैं stress related lifestyle diseases।
0: जी जी जी, तो जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, जो भी लोग अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे, एक बार माफ करके देखिए, आपको खुद से अच्छा लगेगा। और मैम अगर आज कोई लिसनर अपनी लाइफ के एशियस वाले फेज में, मतलब उसको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जहाँ सब कुछ खत्म सा लग रहा हो उसे, तो आप उन्हें एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी लाइफ का वो फीनिक्स मोमेंट ढूंढ सके?
1: हैव एब्सोल्यूट फेथ इन दैट इनविजिबल फोर्स दैट आई सेड देयर इज अ डिवाइन प्रेजेंस, वो हमेशा रहेगी. वो जो है ना शरणागति, सरेंडर, ब्लाइंड फेथ के साथ बढ़ो. एंडिंग लाइफ और यू नो फीलिंग दैट दिस इज ओवर, दैट इज नॉट. वो बोलते हैं ना कि यू गॉड गिव्स यू टेस्ट विच यू कैन ओनली अकम्प्लिश. तो यही सोचना कि ओ गॉड वाई मी ना करके ओ गॉड ट्राई मी.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: एंड इवन फॉरगिवनेस पे मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ. फॉरगिवनेस का मतलब ये है, ठीक है आपने फॉरगिव कर दिया, ये नहीं कि यू नो गो बैक एंड हग दैट पर्सन. द थिंग इज
0: बोल जाओ
1: फॉरगिव. यस करेक्ट.
0: तो जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा. और मैम आज हमारे साथ जुड़ने और हमारे इतना ज्यादा मैं कहता हूँ मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच. और मैं सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूँ फीनिक्स अनबाउंड आपको बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है.
1: yes,
0: और आप लोग इसको जरूर पढ़िए, एक बार मंगाइए अपने पास और पढ़िए. और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं नहीं मिल रही, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड मैम रेडियो महारानी की तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए.
1: थैंक यू सो मच गौरव, मोस्ट वांटेड मुंडा ही डेफिनेटली इज.
0: जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए.
1: लिव ईच डे एज इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ.
0: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी से हमें दीजिए इजाजत. मिलते हैं आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम खास मुलाकात.
2: Say whoa!

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोचिए, सिर्फ 4 साल का एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर खड़ा है, हाथ में माइक, सामने हजारों लोग, और वो गाना शुरू करता है, क्या हुआ तेरा वादा। लोग हैरान रह जाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जिस बच्चे की बात मैं कर रहा था वो बच्चा था सोनू निगम। साल 1973, जुलाई 30 तारीख, फरीदाबाद हरियाणा। घर में म्यूजिक का माहौल था। उनके फादर अगम कुमार निगम खुद एक सिंगर थे। सोनू बचपन से ही अपने फादर के साथ शादियों और स्टेज शोज में गाने जाते थे। जब बच्चे क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलते थे, सोनू स्टेज पर सुरों से खेलते थे। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को अपना आइडल माना। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी आवाज में रफी साहब की झलक सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होके स्टार बनेगा, पर सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं। टीनेज में ही सोनू और उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। सपना था प्लेबैक सिंगर बनना, लेकिन मुंबई सपनों का शहर कम, स्ट्रगल का शहर ज्यादा होता है। स्टूडियो के चक्कर, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार, कभी ऑडिशन मिलता।

भी सीधा मना। एक वक्त ऐसा भी आया जब काम नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी शुरू हो गया था, लेकिन सोनू ने एक बात नहीं छोड़ी और वो थी रियाज, यानी कि प्रैक्टिस। रोज सुबह उठकर सुरों की प्रैक्टिस, क्लासिकल ट्रेनिंग ली उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से। उन्होंने अपनी आवाज को सिर्फ अच्छा नहीं, परफेक्ट बनाने का टारगेट रखा। उन्हें पता था टैलेंट से दरवाजा खुलता है पर मेहनत से करियर बनता है। और फिर एक मौका आया, और कौन सा था वो मौका, करेंगे इसके बारे में बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

साल 1995, जी टीवी पर एक म्यूजिक शो शुरू हुआ, सारेगामा। होस्ट कौन बना? एक यंग एनर्जेटिक सिंगर, सोनू निगम। ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। और ये सारेगामा का जो शो था, ये सोनू निगम के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी आवाज में वार्म्थ थी, बात करने का अंदाज दिल से था, और जब कभी शो में गाते थे वो, तो लोग टीवी के सामने रुक जाते। इंडिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1997, फिल्म बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं। जब ये गाना रिलीज हुआ, पूरा देश रो पड़ा। फौजियों की जुदाई, माँ का इंतजार, देशभक्ति की भावना, सोनू की आवाज ने इस गाने को सिर्फ सॉन्ग नहीं, इमोशन बना दिया। उसके बाद तो जैसे हिट की लाइन लग गई, ये दिल दीवाना, कल हो ना हो, सूरज हुआ मध्यम, अभी मुझ में कहीं, और हर मूड के लिए सोनू निगम रोमांटिक, बिल्कुल राइट, सैड भी, हाई पिच भी, और क्लासिकल टच भी। उन्हें लोग कहने लगे मॉडर्न मोहम्मद रफी। पर सक्सेस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सी भी। तो स्टारडम के साथ कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज ने उन्हें घेरा, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कलर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

2000s के दौरान सोनू निगम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक बन चुके थे। अवार्ड्स, कॉन्सर्ट्स, वर्ल्ड टूर, सिर्फ उनका नाम ही काफी था। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की। सोनू निगम कभी सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट एल्बम्स निकाले, दीवाना जो आज भी एवरग्रीन है। उन्होंने कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, कई लैंग्वेजेस में गाने गाए। साउथ इंडिया में भी उनका क्रेज बॉलीवुड से कम नहीं है। लेकिन 2017 में एक ट्वीट कंट्रोवर्सी ने उन्हें हेडलाइंस में ला दिया। उन्होंने लाउडस्पीकर्स के इशू पर अपनी राय रखी और सोशल मीडिया पर बहुत डिबेट शुरू हो गई। क्रिटिसिज्म हुआ, सपोर्ट भी मिला, पर एक बात क्लियर थी, सोनू निगम अपनी बात कहने से डरते नहीं। उन्होंने कभी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के सामने झुकना पसंद नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सिंगर हूं, किसी का गुलाम नहीं। और ये लाइन उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। और कैसे एक आवाज जो सिर्फ गाती नहीं रूह को छू लेती है, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।

0: वाले
1: ओके ओके
0: रोडवेज
1: सुनाओ
0: रोडवेज की शक्तियों का दही लेकर बैठ जाते
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी मैं तो चली तू बोलता रहा
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन

सोनू निगम की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उनकी वर्सेटैलिटी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सोनू निगम हाई पिच में ये दिल दीवाना ऐसे गाने गाते हैं और फिर अभी मुझ में कहीं जैसे सोलफुल मास्टरपीस भी। उनकी आवाज में दर्द भी है और दुआ भी है। उन्होंने रियलिटी शोज में जज बन

हर नए टैलेंट को गाइड किया, हर कंटेस्टेंट को सिर्फ जज नहीं मेंटोर की तरह ट्रीट किया। स्टेज शोज में उनका लाइव सिंगिंग लेवल स्टूडियो से भी बेटर माना जाता है। ऑटो ट्यून के जमाने में भी सोनू निगम लाइव सुर पकड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट के, ये ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने कभी सिर्फ फेम के लिए गाना नहीं गाया, वो हर गाने को फील करते हैं, इसीलिए जब वो गाते हैं तो लगता है जैसे कहानी सुना रहे हैं। और कैसे सोनू निगम बने एक लेजेंड, करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

आज सोनू निगम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक लेगेसी है। 3 डिकेड से ज्यादा का करियर, हजारों गाने, नेशनल अवार्ड्स, फिल्मफेयर अवार्ड्स। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। इतने सारे नेशनल अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स के बावजूद आप अगर उनसे कभी भी मिलो तो वो वही सिंपल इंसान मिलेंगे जो 4 साल की उम्र में स्टेज पर खड़ा था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टारडम तक ये जो सफर था ना, हमें ये सिखाता है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। और शायद इसीलिए आज जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आता है, बैकग्राउंड में सोनू निगम की आवाज चलती जरूर है, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और वही आवाज है सोनू निगम की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सभी के लिए ये गाना।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
2: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक

संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गेन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम फिर से एक संघर्ष की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। बस कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ हैं ऑर्गन इंडिया से और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर सौरभ शर्मा से बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं जीवन एक अनमोल उपहार कार्यक्रम में। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने अंगदान और प्रत्यारोपण से जुड़ी हुई कहानियां लेकर आते हैं ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके और आप इसके बारे में जागरूक भी बने रहें। हमारे पहले के कार्यक्रम में हमने स्वैप

0: ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था और आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। हम आपके लिए स्वैप ट्रांसप्लांट यानी कि विनिमय प्रत्यारोपण की एक बहुत दिलचस्प कहानी लेके आए हैं। ये क्या होता है और कैसे होता है और इससे कैसे जाने बच सकती हैं, चलिए इस बारे में हम पता करते हैं। आज हमारे साथ नदानी जी हैं जो कि भोपाल शहर से हैं और इनका 2 बार गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका है। नदानी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: नदानी जी, आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जी, पहले तो मैं अर्बन इंडिया का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया। मेरा नाम नदानी राजपूत है, मैं भोपाल शहर से हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बेटी है। माय हस्बैंड नेम इज भगवान सिंह राजपूत, एक किसान है।
0: नदानी जी, आपका हाल ही में स्वैप ट्रांसप्लांट हुआ है और उससे पहले एक और प्रत्यारोपण हुआ था जिसमें किडनी का ऑपरेशन हुआ था, किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था। तो आपको किडनी की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और दूसरी बार ट्रांसप्लांट की नौबत कैसे आ गई?
1: जी, मुझे किडनी की बीमारी 2012 में जनवरी से स्टार्ट हुई थी। उस समय मुझे किडनी की बीमारी रहते समय मुझे फीवर, वोमिटिंग और स्वेलिंग वगैरह काफी चीजें ऐसी थी जो महसूस होने लगी थी। उसके बाद फिर 6 साल तक ये किडनी चली। उसके बाद फिर दोबारा ट्रांसप्लांट के लिए 2018 में जरूरत पड़ी।
0: 2018 में 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपको दूसरी किडनी की जरूरत पड़ गई?
1: जी, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का, उसके रहते कोई ऐसे मेडिसिन पेन किलर वगैरह कोई साइड इफेक्ट इस तरह से हुआ कि मेरी मतलब फर्स्ट ट्रांसप्लांट किडनी फेल हो गई।
0: बिल्कुल। एंड दोबारा फिर आप दिल्ली गए?
1: जी हाँ, गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। फर्स्ट डॉक्टर एके मल्लानी किया था, फिर वहाँ पर गए हम। फिर जैसे ही हमें पता चला कि हमारा क्रिएटिनिन 4 पर है तो सर ने एडमिट करवाया। उसके बाद फिर हम भोपाल आए कुछ मेडिसिन लेकर। फिर हमारे मन में ऐसा आया कि क्यों ना बंसल हॉस्पिटल में हम इलाज करवाएं, क्यों हम हमारे जब हमारे शहर में ये सुविधा उपलब्ध है तो दूसरे शहर क्यों जाना है। फिर डॉक्टर विजयनंद त्रिपाठी से मिले हम पहले, तो फिर उन्होंने बोला आपको भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल। नदानी जी, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, हमारे काफी श्रोताओं को स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि स्वैप ट्रांसप्लांट एक लाइव ट्रांसप्लांट होता है जिसमें आपका फैमिली मेंबर आपको ऑर्गन सिर्फ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। तो ऐसी फैमिलीज को ढूंढा जाता है और उनकी फैमिली में उनके डोनर से आपके डोनर का ऑर्गन एक्सचेंज किया जाता है, तो इसको हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। बट इसकी लिमिटेशन ये होती है कि आपकी फैमिली मेंबर अगर आपका डोनर है तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आते हैं और आगे की कहानी सुनते हैं।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: हम एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे नदानी जी से, जो कि डबल किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं। नदानी जी, आपका पहला ट्रांसप्लांट हो गया और फिर से आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत आई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हम सब जानते हैं कि अंग मिलना बहुत मुश्किल है और दो बार तो और भी मुश्किल है। स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में आपको कैसे पता चला और जो आपके स्वैप ट्रांसप्लांट के डोनर थे वो कैसे आपको मिले?
2: मुझे स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में डॉक्टर गोपेश मोदी ने बताया कि स्वैप ट्रांसप्लांट होता है और डोनर भी मुझे डॉक्टर के द्वारा ही मिले।
1: तो आपने क्या वेटिंग लिस्ट में अपना नाम ऐड नहीं करना चाहता डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम के लिए? जिन लोगों की ब्रेन डेथ हो जाती है उन लोगों के ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
2: डॉक्टर ने मुझसे कहा था, जैसे कि आपने बोला अभी एक डेड बॉडी की किडनी का, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था, लेकिन मेरी कंडीशन इस तरह थी कि मेरी डायलिसिस उस समय नहीं हो पाती और वेटिंग लिस्ट में काफी समय लंबा होता है, जो शायद नंबर आते आते पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो फिर इसके लिए डॉक्टर ने हमें स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, फिर हमने उसको ही सही समझा।
1: इस तरह के ट्रांसप्लांट के बारे में पहले आपने कभी सुना था क्या? आप इसके लिए तैयार थी स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए?
2: जी नहीं, मैंने कभी नहीं सुना था, डॉक्टर के द्वारा ही स्वैप ट्रांसप्लांट सुना और मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि मेरी दोबारा किडनी फेल होगी।
1: ओके, और आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि इस तरह के कोई ऑप्शन से आपकी जान बच जाएगी?
2: नहीं, कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी मैंने।
1: दूसरी बार जो आपका ट्रांसप्लांट हुआ, जो आपके डोनर थे वो आपके हस्बैंड थे। पहली बार आपकी माताजी ने आपको किडनी डोनेट करी थी और दूसरी बार आपके हस्बैंड ने। तो फैमिली में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको फैमिली में डोनर्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारी फैमिली में डोनर नहीं मिलते। और हम अपने शो के माध्यम से यही चीज बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों को अंगों की जरूरत है और उनकी फैमिली में जब डोनर्स नहीं होते तो उनको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसलिए सभी लोगों को अपने अंग दान करना चाहिए।
2: जी हाँ।
1: मदानी जी, आप मुझे ये बताइए कि जो आपका पहला ट्रांसप्लांट हुआ था और अब जो आपका दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पहले की लाइफ और अभी की लाइफ, पहले के ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ और सेकंड ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? आपको कुछ अंतर समझ में आया हो ऐसा?
2: जी हाँ, पहले ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी ठीक था, पर 6 साल तक चला। उसके दरमियान मेरे पैरों से सूजन कभी नहीं गई थी और कुछ फीवर वगैरह हमेशा आते रहते थे, क्योंकि ट्रेन वगैरह में जाना होता था तो काफी परेशानियां होती थी मुझे। और यहाँ पे ट्रांसप्लांट होने से, मतलब अपने ही शहर में ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे काफी फायदा हुआ, यहाँ मेरे चेकअप जल्दी से जल्दी होते रहे और उसके बाद मतलब एकदम
1: में होने की वजह से ज्यादा सुविधाजनक हो गया।
2: हाँ, ये यहाँ पे मुझे ज्यादा आराम लगता है।
1: जी, डोरा भागी थोड़ी सी कम हो गई और अपने ही शहर में डॉक्टर्स हैं तो वो ज्यादा सुविधाजनक।
2: अपने शहर में, मतलब कहते हैं कि अपने शहर में ही ज्यादा ट्रांसप्लांट होने का वो रहे पास में तो ज्यादा फायदा होता है।
1: और दवाइयों में कुछ कमी बढ़ोतरी?
2: नहीं, दवाइयाँ काफी कम चल रही है यहाँ पे।
1: और पहले के ट्रांसप्लांट के, जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था, तब दवाइयाँ ज्यादा लेती थी?
2: जी हाँ, दवाइयाँ वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की ज्यादा चलती थी। अभी यहाँ पे तो खाली बीपी वगैरह की और किडनीज की दवाइयाँ चलती है, बस ज्यादा नहीं चलती है।
1: ओके, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है?
2: डॉक्टर यही कहते हैं कि बाहर निकलो घर से तो मास्क लगाकर निकलो और उसके बाद बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए और घर में भी मतलब इतनी साफ सफाई रखोगे ताकि कोई बाहर वाला आए तो डायरेक्ट उससे बात करना मना रहता है। मास्क लगाकर बात करो किसी से भी और खाना पीना घर में आप चाहे जो बना सकते हैं खा सकते हैं, पर बाहर का नहीं खाना है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपन घर में, बस खाने का बाहर मना होता है इसमें।
1: जी, एनीवे यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द ही वापस आएंगे अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए।

0: यू आर डिफरेंट, यू नो, सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। एम आई मेकिंग सेंस?
1: नॉट एट ऑल। दैट विल बी 3,000 रुपीज प्लीज।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: किरदार आज के जमाने के लिए यादगार
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हार।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल,
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी।

0: सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग शो रात बाकी बाद बाकी में सपना के संग
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मिलके एक दिया जलाई। अंतरतम के विश्वास संग बाती ने ही की सजाई। आओ मिलके एक दिया जलाई, एकता का परचम चम ओर फहराई। आओ मिलके एक दिया जलाई, अंतरतम के विश्वास संग बाती ने ही की सजाई। आओ मिलके एक दिया जलाई। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती ने ही की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं और इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम आज नदानी जी से बात कर रहे हैं उनके स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। स्वैप ट्रांसप्लांट में दो परिवार आपस में किडनी एक्सचेंज करते हैं, इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बची हैं, जैसा कि नदानी जी के साथ हुआ। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आइए हम उनके साथ मिलकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नदानी जी, आपकी फर्स्ट जो ट्रांसप्लांट हुआ था आपका, तब आपकी माता जी ने आपको किडनी दी थी और सेकंड ट्रांसप्लांट में आपके हस्बैंड ने आपको किडनी दी, तो अब की तबीयत कैसी है? उन दोनों का भी ट्रांसप्लांट हुआ, मेजर सर्जरी हुई, उनकी एक किडनी ली गई उनके शरीर से, तो अब उनको भी दवाइयां खानी पड़ती हैं, या उनकी तबीयत अब कैसी रहती है? पहले जैसी सामान्य लाइफ हो गई है उनकी, सामान्य जिंदगी हो गई है, या फिर उनको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है?
3: पहले मेरी मम्मी ने किडनी दी थी मुझे, वो एकदम नॉर्मल है और वो तो हाउसवाइफ है घर की, तो उनको तो सारे काम थोड़े थोड़े करने भी पड़ते हैं, वो सारे काम करती हैं और उनके स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं है। जैसी वो पहले थी वो आज भी वैसे ही है, ना उनकी कोई मेडिसिन चलती है, ना कुछ भी नहीं उनको प्रॉब्लम होती है। और मेरे हस्बैंड तो एक किसान है, वो किसान होकर उन्होंने किडनी दी मुझे, और आप तो जानते हैं किसान को कितना काम खेतों में करना पड़ता है।
2: बिल्कुल, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है।
3: वो आज भी खेती करते हैं, मतलब पूरे नॉर्मल लाइफ पहले जैसी है उनकी, उनको कोई, यहाँ तक कि मम्मी की तो थायराइड की भी दवाई चलती है, लेकिन मेरे हस्बैंड की तो कोई भी दवाई नहीं चलती है।
2: आपके जो पति हैं शारीरिक मेहनत अभी भी उतनी ही करते हैं?
3: जी हाँ, वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाकी खेतों पर तो काम बताना और जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम शुरू से जो करते थे वो करते हैं, बाकी वर्कर्स रहते हैं वो करते हैं, पर पहले जैसे है उनको कोई अंतर नहीं है कि वो पहले क्या थे और अब क्या है, एकदम पहले जैसे है।
2: बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली जब हम किसी अपने की जिंदगी बचाते थे एक अंदर से एक खुशी का एहसास होता है, और वो खुशी हमें नई जिंदा दिली भर देती है, जो कि हमें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है।
3: जी हाँ, मैंने तो मेरे हस्बैंड से मना भी किया कि नहीं आप किडनी मत दीजिए, मुझे डायलिसिस कर ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि ऐसा ना हो कि मैं किडनी पेशेंट हूँ और मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए किडनी देने से। तो जब मेरे डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा कि जब एक डॉक्टर होकर डॉक्टर ने किडनी डोनेट की है तो आप लोगों को क्या होगा किडनी देने में।
2: बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में ये दुविधा होती है कि अगर हमने अपनी एक किडनी दे दी तो हम मेहनत भरा काम नहीं कर सकते, हम कोई शारीरिक रूप से हम एक लिमिट में रह जाएंगे, हम कुछ चीजें जो है नहीं कर पाएंगे एक सामान्य इंसान की तरह। तो बहुत अच्छा है आप ये बात बता रही हैं, तो शायद उनको इस चीज से मदद मिले और उनके मन की दुविधा दूर हो सके कि एक किडनी हम दे सकते हैं और एक किडनी पर हम अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल सामान्य तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहकर निकाल सकते हैं।
3: जी हाँ, क्योंकि किडनी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंसान ये कई लोग ये सोचते हैं कि किडनी देने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी देने से इंसान पहले की तरह ही नॉर्मल रहेगा, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ 15-20 दिन से लेकर उसके लिए थोड़ा डॉक्टर जो बताते हैं वो नियम करना पड़ता है डोनर को, और उसके बाद वो सारी लाइफ अपने मन के मुताबिक जी सकता है। इससे कोई खतरा नहीं है किडनी देने से, और कोई कमजोरी भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है।
2: जी बिल्कुल,
4: आपके परिवार में आपका जो फर्स्ट डोनर था वो आपकी माता जी थी, आपका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो आपकी माता जी ने किडनी डोनेट करी थी, और जो आपका सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ उसमें आपके हस्बैंड ने अपनी किडनी दूसरी फैमिली को डोनेट करी और दूसरी फैमिली के डोनर ने आपको अपनी एक किडनी दी। आप अभी भी इस फैमिली से संपर्क में हैं जिन्होंने आपको किडनी डोनेट करी, आप उनसे बातें करती हैं, आप उनसे मिलती हैं?
3: जी हाँ, मैं अभी भी हम लोग इस फैमिली से एक घर परिवार जैसे ही मिलते जुलते हैं और फोन पर हमारी बातें अक्सर हुआ करती हैं और हम परिवार जैसे ही एकदम हमारे बीच एक रिश्ता सा बन गया है।
4: क्या वो फैमिली भी भोपाल से ही बिलोंग करती है?
3: जी नहीं, वो झांसी से है।
4: नदानी जी, आपके जो डोनर थे वो दूसरे धर्म से थे, तो क्या इस बात से कभी आपको कोई परेशानी हुई? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों से प्रभावित होते हैं, तो आपकी फैमिली में कभी किसी ने इस पर आपत्ति जताई, आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा कि मैं दूसरे रिलीजन के लोगों से ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ले रही हैं?
3: जी नहीं, मेरे फैमिली से मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और खुद मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ट्रांसप्लांट कराने के लिए सही सलाह दी। बोले जात पात का कोई वो नहीं होता इसमें, हर इंसान एक जैसा है और जिंदगी से बड़ा फिर कोई धर्म क्या है।
4: बिल्कुल, हम भी यही मानते हैं कि अगर हमारे किसी भी काम से किसी इंसान की जान बच रही है, किसी इंसान का भला हो रहा है, तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता। और हमने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं, बहुत सारे डोनर फैमिलीज से हम मिले हैं जिसमें उन्होंने जो ऑर्गन डोनेट किए हैं वो किसी हिंदू को गए हैं या किसी और दूसरे धर्म को गए, तो ऐसी कोई परेशानी हमें तो देखने नहीं मिली। तो हम अपने श्रोताओं को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के वो ज्यादा से ज्यादा अंगदान करें ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके।
3: नहीं, एकदम सही सोच है आपकी कि अंगदान ज्यादा से ज्यादा होगा तो शायद ज्यादा जिंदगियां बचेंगी और किसी की जान बचकर हमको जो पुण्य मिलता है शायद उससे तो शायद भगवान भी खुश होता होगा।
4: नानी जी, हमारे श्रोताओं को अगर आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं।
3: हाँ, मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज है, अगर ये किसी के काम आती है तो ये सबसे बड़ा दान है। सबसे ज्यादा अंगदान करें और अंगदान से बड़ा दान शायद ही कोई होगा। किसी की जान बचती है, कोई तड़पता इंसान दोबारा जिंदगी पाता है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अंगदान करें और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाएं, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां दान सबसे बड़ा माना जाता है।
4: बिल्कुल नदानी जी, मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आप इस मामले में बहुत लकी हैं जो आपको दो बार आपकी फैमिली में से डोनर मिल गया। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे, बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादातर पेशेंट्स, ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो इतने लकी नहीं होते, जिन्हें इतनी आसानी से अंग नहीं मिलता प्रत्यारोपण के लिए। उन्हें सालों वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ता है और वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि उन सालों के बाद भी उनका नंबर नहीं आता। बहुत सारे मरीज इस वेटिंग पीरियड के दौरान ही मर जाते हैं। मैं सभी श्रोताओं से यही विनती करना चाहूंगा कि हम अपने जीने के बाद अपने शरीर को हम जला देते हैं या दफना देते हैं, अगर हम यही काम अपने अंगों को दान करने के बाद में करें तो हम बहुत सारी जरूरतमंद लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। नन्नी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं।
3: जी हाँ,
4: और आज का हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं।
5: हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत सारे मरीजों को और उनके परिवारों को लाभ हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ किसी शॉर्टकट के फेवर में नहीं होती। आप चाहो मेहनत करो फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। आज बिजनेस अनप्लग में मैं किसी नाम से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सम स्टोरी डिजर्व पेशेंस, उन्हें धीरे धीरे खुलना चाहिए। मैं हूँ गीत एंड हियर वी टॉक अबाउट पीपल जो ओवरनाइट सक्सेस के पोस्टर पर नहीं आते, लेकिन जिनकी जर्नी रियल होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी लाइफ में रिसोर्सेज कम थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा। बैकग्राउंड सिंपल था, फैमिली भी सिंपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी थी। फॉर्मल एजुकेशन एक पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई, नॉट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था बट बिकॉज सर्वाइवल केम फास्ट। जब आपको चूज करना पड़े ना बिटवीन डिग्री एंड डेली नीड्स, तो ड्रीम्स थोड़ा वेट पर चले जाते हैं। इस इंसान ने भी वही किया, फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि काम मिल सके। अर्ली इयर्स में इनको ये समझ आ गया था कि कंफर्ट जोन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो काम मिला वो किया, नो ईगो नो कंप्लेंट्स। 2 साल तक पूरी सिंसेरिटी के साथ इन्होंने ट्राई किया, बट बिजनेस डजंट ऑलवेज रिवॉर्ड अफोर्ड इमीडिएटली। वो वेंचर फेल हो गया एंड दैट फेज वॉज रियली टफ। पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और खुद से एक सवाल, अब आगे क्या। देयर वॉज अ डे जब बेसिक थिंग्स भी स्ट्रगल बन जाती, सब एक साथ हैवी लगता, और यही वो वक्त होता है जहाँ लोग रुक जाते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ नेगेटिव लग रहा था तब इस इंसान ने एक सिंपल चीज नोटिस की, चाहे लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग एक चीज एंजॉय करना नहीं छोड़ते, समथिंग टेस्टी, समथिंग कम्फर्टिंग। फूड इज इमोशन, और जब इमोशन समझ आए तो बिजनेस भी डायरेक्शन दिखाता है। अभी ये सिर्फ एक थॉट था, एक ऑब्जर्वेशन, एक्शन अभी बाकी था। कैसे एक ऑर्डिनरी स्पेस जैसा एक सिनेमा हॉल एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ ने इजी मोड कभी ऑन ही नहीं किया। अब कहानी थोड़ी और रियल होने वाली है। बिजनेस फेल हो चुका था, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली प्रेशर में थी। इस फेज में इस इंसान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा, बस एक चीज की, काम। जो काम मिला वो किया, कभी एक सिनेमा हॉल के अंदर, कभी उसके बाहर, कहीं काउंटर्स पे हेल्प, कहीं पोस्टर चिपकाना, कहीं सीट रिपेयर, कहीं छोटी मोटी मेंटेनेंस। सैलरी ज्यादा नहीं थी बट इट वॉज ऑनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली ये वही स्टेज होती है जहाँ ईगो या तो टूट जाता है या फिर कैरेक्टर बन जाता है। लाइफ यहाँ भी स्मूथ नहीं थी, रेंट के इश्यूज, बेसिक एक्सपेंसेस का स्ट्रेस, इतना कि एक टाइम पर घर छोड़ना भी पड़ा। इमेजिन दैट मोमेंट जब आप सिर्फ इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते हो, बट स्लोली हार्ड वर्क नोटिस होने लगा। सिनेमा हॉल की कैंटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड इनकम। इट वॉजंट बिग मनी बट इट वॉज स्टेबिलिटी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रोज लोग मूवी देखने आते, हंसते, चिल करते और इंटरमिशन में एक ही चीज ढूंढते, कुछ खाने की। ये इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, लोग क्या पसंद करते हैं, कौन से फ्लेवर्स चाहते हैं, कौन सी चीज रिपीट होती है, विदाउट एनी MBA, विदाउट एनी फॉर्मल रिसर्च, बस रियल लाइफ डेटा। और यहीं पे पहली बार दिमाग में इनके एक थॉट आया, व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस एक आइडिया था। और आइडियाज अक्सर सबसे पहले चुप होते हैं, और इस पॉइंट पर ना कोई ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इन्वेस्टमेंट का बैकअप, बस एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग विल कि इस बार कुछ अलग ट्राई करना है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत होम मेड लेवल से स्टार्ट होती है, कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट लोगों का फेवरेट बनने लगता है, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। गाना सुनते हैं पहले, गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: We back.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, अपने हमेशा सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

0: होगा कोई।
1: वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपको एक जर्नी सुनाने वाली हूँ बिना नाम बिना ब्रांड सिर्फ स्ट्रगल चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन की कहानी। अब टाइम है उस नाम को सामने लाने का जिससे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज चंदू भाई वीरानी, फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स। यस, वही बालाजी वेफर्स जिसके पैकेट्स आज ऑलमोस्ट हर घर, हर शॉप, हर एज ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। सोचो, जो सफर एक सिनेमा हॉल की कैंटीन से स्टार्ट हुआ, आज वो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बना दिया। आज बालाजी वेफर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करती है। गुजरात से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नेशनल प्रेजेंस रखता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेफर्स, सेव, नमकीन रेंज हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ में है और ये प्योर नंबर्स हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन जहां 5000 लोग काम करते हैं। सोचो, इस इंसान को जो कभी रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज हजारों फैमिली की आशाएं उसके विजन से जुड़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक, रिटेल रीच, एवरीथिंग बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, नो ओवरनाइट मैजिक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालाजी वेफर्स ने कभी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। प्रोडक्ट ने खुद अपना काम किया, टेस्ट ने मार्केटिंग संभाली। चंदू भाई वीरानी आज भी सिंपल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है बल्कि ट्रस्ट का था। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी, ट्रस्ट ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑन पीपल। और शायद इसीलिए बालाजी वेफर्स सिर्फ मार्केट में नहीं, लोगों के रूटीन में भी है। तो क्यों ना अभी एक गाना सुन लिया जाए। गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी, बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट वेफर्स, इट्स अबाउट डिसीजन। सो स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा पॉज लिया जाए और उनके चाइल्डहुड में डाइव किया जाए। इनका चाइल्डहुड दरअसल फ्लैशी नहीं था, नो बिग ड्रीम्स, नो बिग एक्सपोजर, बस एक सिंपल सा घर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में सब कुछ इजिली नहीं मिलता है। ये स्कूल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी, बट प्रायोरिटीज अलग थी, फैमिली फर्स्ट, सर्वाइवल फर्स्ट। बचपन में ही ये सीख मिल गई थी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जरूरी है वो करना पड़ता है, और शायद यही अर्ली लर्निंग बाद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और स्केल कहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये है, बीच में ऐसा क्या किया गया जिसने एक स्मॉल सेटअप को एक सॉलिड बिजनेस बना दिया? बिकॉज ऑनेस्टली आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। बालाजी वेफर्स के केस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिमांड कम हो, चाहे मार्जिन थोड़े टाइट हो, टेस्ट और कंसिस्टेंसी कभी नेगोशिएट नहीं करी जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, स्लो बट कंट्रोल ग्रोथ, नो अननेसेसरी

में भी होनी चाहिए। यहीं पे बालाजी वेफर्स एक बिजनेस से ज्यादा एक सिस्टम बन जाता है। नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन, और शायद इसी वजह से ये ब्रांड डिकेड्स के बाद भी रेलेवेंट है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो वो ये होगी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंस। और आज हमने जिस जर्नी की बात की ना उसमें कोई शॉर्टकट था ना कोई मिरेकल मोमेंट। ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, ये सिखाती है कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेशर में भी क्लैरिटी मेंटेन की जाए, कैसे ग्रोथ के चक्कर में कोर को लूज न किया जाए। एक सिंपल माइंडसेट, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर इंटेंट क्लियर है तो स्केल टाइम के साथ आता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपके डिसीजन करते हैं। और आज जब हम बिग नंबर्स, बिग फैक्ट्रीज और बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक फेज के बाद आता है। पहले फेज में सिर्फ पेशेंस होता है और प्रोसेस। और बिजनेस अनप्लग्ड का पर्पस भी यही है, सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज की स्टोरी से आप एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये हो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड स्टे ऑनेस्ट टू द प्रोसेस। मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कल फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ, एक और ग्राउंडेड जर्नी के साथ। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप बिलीविंग और कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ। खास मुलाकात मेरे साथ है दीपक प्रसाद जी, प्रेसिडेंट रोटरी ब्लड सेंटर फरीदाबाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू
0: जी। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशन के कितने सारे फायदे हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ब्लड डोनेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है?
1: ब्लड डोनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके हेल्थ के लिए आप समझो आप दूजे की तो लाइफ सेव करोगे बट अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए भी काम करोगे। आपको अगर हेल्दी रहना है
0: जी
1: तो आपको ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेकअप होता है? ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यानी ब्लड में जितनी बीमारियां हैं ब्लड के थ्रू डायग्नोस की जाती हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड डोनेट करोगे तो आपका ब्लड फ्रेश ब्लड बनता रहेगा और इससे क्या होगा, आपका पुराना ब्लड निकल गया, नया ब्लड बन रहा है तो सर्कुलेशन में चल रहा है पूरी बॉडी में। आप समझो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है
0: जी,
1: जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हो, क्लॉट्स नहीं बनते, आपको हार्ट अटैक नहीं आता, आप देखो पैरालिसिस का अटैक नहीं आता, कैंसर जैसी डिजीज से बचे रहते हो
0: जी।
1: आप देखते होंगे अक्सर जो रेगुलर ब्लड डोनर होता है उसके कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते
0: हैं जी।
1: तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमें हमेशा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए
0: जी।
1: आप 18 प्लस होती है आप अपना ब्लड डोनेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेल 3 मंथ्स में ब्लड दे सकता है।

0: और फीमेल 4 months में.
1: ओके.
0: तो और आप 18 से लेके 60 इयर्स तक तो आप कंटिन्यूएशन में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. 60 प्लस होने के बावजूद अगर आपने 60 इयर्स से पहले अपना ब्लड डोनेट किया है तो आप 65 तक भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं.
1: जी.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: अब यहाँ पर हमने फायदों पर तो बात कर ली है, लेकिन अब बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, बिकॉज ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के दिमाग में काफी सारे मिथ्स रहते हैं। तो ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जिन पर लोग आज भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं?
1: हर माँ ये कहती है बेटा तू कमजोर हो जाएगा, हर फादर ये कहता है बेटा ब्लड डोनेट मत कर, हेल्दी नहीं रहेगा।
0: हाँ जी,
1: मुझे लोगों को ये लगता है कि ब्लड बॉडी से निकलेगा और बच्चे को वीकनेस आ जाएगी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है
0: जी।
1: आपका 48 आवर्स में सारी ब्लड की रिकवरी हो जाती है और आपको लिक्विड डाइट लेना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, आज मेरी एज 50 में टच करने वाला हूँ 13th of August को
0: जी,
1: और मेरा भी 93rd डोनेशन था अभी 6th of July को,
0: 93rd।
1: और आप सोचो, मतलब कहना नहीं चाहिए हमें, आप सोचो कोविड में हम डेली घर से बाहर निकले, हमने कोविड के टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया
0: जी,
1: हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है रेगुलर ब्लड डोनर का,
0: हाँ जी,
1: उसको छोटी मोटी बीमारी तो टच भी नहीं कर सकती। आप समझो इवन आपको कोल्ड नहीं होता, फीवर नहीं होता, आपको कोई भी बीमारी टच भी नहीं कर सकती अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हो
0: जी,
1: क्योंकि आपका हेल्थ इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो किसी भी बीमारी को पहले ही भगा देता है।
0: हाँ जी,
1: तो ये मिथ अपने आप में से निकाल देना चाहिए, और अगर इससे अगर कोई नुकसान होता है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती तो आज हिंदुस्तान में कितनी ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस आ गई है हर शहर में, और फरीदाबाद शहर तो आज देखो हरियाणा में नंबर वन है ब्लड डोनेशन में, ओनली बिकॉज ऑफ कि सबको पता लग गया कि ब्लड डोनेट करने से आप अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और साथ में जीवन दान देने का काम कर रहे हो, एक तो ईश्वर का काम कर रहे हो और एक अपने आप अपनी सेहत को सुधार भी रहे हो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

0: जी, यहाँ पर मिथ्स पर बात हो गई है। आपने एज का भी बता दिया था कि क्या एग्जैक्टली कौन सी एज होती है ब्लड डोनेट करने की, लेकिन अब हम बात करेंगे वेट और हेल्थ का जो क्राइटेरिया है तो उस पर वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए।
1: जो डोनर है उसका वेट मिनिमम 45 kg होना चाहिए और मैक्सिमम तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचो 45 से लेके 55 तक जिनका वेट होता है, मेल का हम लेते हैं 350 ml और फीमेल का तो हम सबका ये 350 ml लेते हैं क्योंकि उनका ब्लड लॉस वैसे हो जाता है, तो फीमेल का तो 45 से जितना मर्जी वेट हो हम उनका 350 ml ही लेते हैं, छोटा बैग बनाते हैं, और जो मेल है जिसका वेट 55 प्लस होता है हम उनका 450 ml ब्लड लेते हैं
0: जी।
1: तो ये हेल्दी है, आपकी बॉडी से इतना ब्लड निकलता है और वो बन जाता है 48 आवर्स के बाद में, लेकिन डोनेशन देने के लायक आप आफ्टर 3 months होते हैं मेल और फीमेल 4 months के बाद। और इसके साथ एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, आधे लोगों को नहीं पता, आप साल में 24 टाइम्स अपना प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हो। एसडीपी जिसको कहते हैं, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि डेंगू हो गया, प्लेटलेट काउंट गिर रहे हैं, तो हमें प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं, ब्लड डोनेशन के 28 days बाद आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और प्लेटलेट डोनेशन के 48 hours के बाद आप अगेन प्लेटलेट डोनेट कर सकते हो, उस स्पीडली हमारे प्लेटलेट्स बन जाते हैं, और महीने में 1 month में 4 times आप अपना प्लेटलेट डोनेट कर सकते हो। ये बिल्कुल हेल्दी रहता है आपके लिए, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: सर, एक हेल्दी पर्सन कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है और डोनेशन से पहले और बाद में किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे?
1: एक हेल्दी पर्सन मेल साल में 4 times डोनेट कर सकता है और फीमेल साल में 3 times डोनेट कर सकती है।
0: ओके,
1: इसमें जो ख्याल रखने वाली बात यह है, आप अपना हेल्दी डाइट लें डोनेशन से पहले और आप लिक्विड ले लें, 1 glass पानी पी लें डोनेशन से पहले, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्लड डोनेट करके अपना मतलब ये मानवता की सेवा का कार्य कर सकते हैं। और आप अल्कोहल ना लें 24 hours पहले, आप स्मोक ना करें और इन्हीं चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप हेल्दी होने चाहिए, आपका बीपी ठीक होना चाहिए, आपका HB लेवल ठीक होना चाहिए और वो डॉक्टर की स्क्रीनिंग के बाद ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं भी ब्लड डोनेशन के लिए चले जाएं और आपका ब्लड ले लेगा कोई, डॉक्टर साहब की प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग के बाद में आप एलिजिबल होंगे तभी आपका ब्लड लिया जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको डेफर कर दिया जाएगा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अब एक और सवाल आता है, और ये सवाल मोस्टली लोग सोचते हैं कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसके बाद जो वो ब्लड का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्या किया जाता है?
1: आप ब्लड डोनेट करते हैं, दो तरीके के बैग यूज किए जाते हैं नॉर्मली, डबल और ट्रिपल। डबल बैग में क्या होता है, FFP और आपका PRBC बनता है। वो जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो आपका एक ही बैग में ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड बैंक में जाने के बाद वहाँ सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: और उनको सेपरेट किया जाता है। एक बैग में अपना प्लाज्मा चला जाता है, एक में PRBC। ऐसी हम ट्रिपल बैग जब यूज करते हैं उसमें RDPC भी लिया जाता है। उसमें एक PRBC बनता है, एक FFP बनता है, एक RDPC बनता है। RDPC हो गया रैंडम डोनर प्लेटलेट काउंट हो गया, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल हो गया। ये तीन कंपोनेंट बनते हैं। वहां जाने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको कंपोनेंट बनाए जाते हैं और इसको सेपरेट किया जाता है। फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। पांचों टेस्ट होते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, मलेरिया। इन पांचों टेस्टों में अगर वो ब्लड ओके निकलता है तो हम आगे किसी को इशू करते हैं जिसकी वो रिक्वायरमेंट होती है।
0: जी,

0: तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जो डोनर पहली बार ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, नर्वस फील करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होने वाला है?
1: मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको इनिशियल स्टेज में तो घबराहट होगी, लेकिन अगर आप एक बार अपना ब्लड डोनेट कर देंगे ना, तो नेक्स्ट डेट का आप वेट करेंगे कि मेरे 3 मंथ्स कब कंप्लीट होने वाले हैं या मेरे 4 मंथ्स कब कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, बेटा बेटी दोनों, जब वो 18+ हुए उन्होंने अपने बर्थडे में ब्लड डोनेट किया, और उसके बाद से बेटा और बेटी दोनों वेट करते हैं कि पापा कब हमारा नंबर आने वाला है, बेटी का 4 मंथ्स, बेटे का 3 मंथ्स। तो बेटी ब्रदर से कहती है नहीं, हम दोनों साथ डोनेट करेंगे, तू भी 4 मंथ्स के बाद ही करेगा, हम दोनों साथ देंगे। तो आज वो दे रहे हैं, देखो वो हेल्दी भी है, फिट भी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है
0: जी।
1: और इसमें सबसे अच्छी बात मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 99% लोगों
0: मतलब को मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट है।
1: यस, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं आप किसी भी हालत में डिप्रेशन में नहीं जा सकते।
0: ओके।
1: क्योंकि उससे स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी, आप ऑटोमेटिकली, केमिकल का ही तो लोचा है, आप सोचो हम जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे वैसे हमारी हेल्थ होगी। तो रेगुलर ब्लड डोनर को एडवांटेज ही एडवांटेज है, इसके एडवांटेज तो गिनवाने भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे पढ़े लिखे बच्चे हमारे यंगस्टर्स, तो आपको पता लगेगा कि ब्लड डोनेशन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब भाग्यशाली होता है जो शॉर्टलिस्ट होता है ब्लड डोनेशन के लिए, जो एलिजिबल डोनर होता है वो भाग्यशाली होता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, किसी का एचबी लेवल कम आता है, किसी का बीपी बहुत हाई होता है या लो होता है, और आप देखो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाता। तो वी आर लकी पीपल, हम लोग एलिजिबल हैं और हम अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जीवन दान दे रहे हैं, उन लोगों को जो डेथ बेड पे वेट कर रहे हैं ब्लड की। अगर आप डोनेट ही नहीं करोगे तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे मिलेगा।
0: जी बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को रेडियो महारानी की तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, रक्तदान महादान है, इसमें हम सबको मिलकर आहुति देनी चाहिए, और हमें समाज में मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी इंसान की ब्लड की शॉर्टेज की वजह से जीवन ना जाए, और सबको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले समय पर, जब भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो। ब्लड हर ब्लड बैंक में होना चाहिए, जब ब्लड बैंक में ब्लड होगा, मान लो फॉर एग्जांपल चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड में, उसके रिश्तेदार तो कब पहुंचेंगे, उसके अपने परिवार वाले कब पहुंचेंगे, उससे पहले तो उसको उठा के कहीं किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है
0: जी।
1: और अगर उसका मेजर ब्लड लॉस हो गया और हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है या ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो उसके आज जीवन कैसे बचा पाओगे?
0: Exactly.
1: बिना ब्लड के तो जीवन संभव ही नहीं है। तो मेरी सब लिसनर से मेरी अपील है, आप जहां भी हो, जब भी आपको समय मिले, और आप अगर एलिजिबल डोनर हैं, तो आपको 100% अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए और समाज हित में काम करना चाहिए। ईश्वर ने एक ही तो जिंदगी दी है, अगर उस जिंदगी में भी आपने अच्छे काम नहीं किए, और आप सोचो ये तो आपकी आपकी बॉडी में भगवान ने एक ऐसी फैक्ट्री बना दी है जिसमें ऑटोमेटिक ब्लड बनता रहता है, आप सोचो जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहा है, यानी उसके यहाँ उसकी बॉडी में किसी वजह से ब्लड नहीं बन पा रहा, उसको वीकनेस आ रही है, एचबी लेवल उसका गिर रहा है, तो आप तो भाग्यशाली है ना, आप देने के स्टेज में है, वो जो ले रहा है, आप सोचो उसकी बॉडी में बनता नहीं है, आप सोचो आप कितने लकी हैं, उस ईश्वर ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की हुई है। तो हमें उस कृपा को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए और अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आप समय निकालना चाहिए, फुर्सत को भी नहीं सोचना चाहिए, जब भी आपके 3 मंथ्स पूरे हो जाए मेल, और फीमेल जब भी आपके 4 मंथ्स हो जाए, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे किसी की भी ब्लड की शॉर्टेज से जान ना जाने पाए।
0: जी जी
1: धन्यवाद जी।
0: जी थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए।
1: शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

एक छोटा सा हरा पत्ता जो सिर्फ जुबान पर नहीं इतिहास पर भी रखा गया, जो दरबार से गली तक पहुंचा और आज भी जिंदा है। मैं बात कर रही हूँ पान की। वो कहा है कि जुबान पर रखा पान सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये पहले लोगों को और फिर कहानियों को जोड़

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज कल्चर कारवा की कहानी हमें लेकर जा रही है पान के इतिहास की तरफ। पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं होती, ये वो रस्म है जहां बात शुरू भी होती है और खत्म भी। पान की बात की जाए तो पान की सबसे पुरानी जड़ी हमें हिस्ट्री से मिलती है। कहा जाता है पान कोई नया फैशन नहीं, इसकी जड़ें भारत के इतिहास में 4000 से 5000 साल पीछे जाती हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पान का जिक्र मिलता है। चरक संहिता भी ये बताती है कि पान आज का नहीं, ये तो सदियों पुराना है। शायद इसलिए पान को कहा गया डाइजेशन सुधारने वाला या फिर माउथ क्लींजर, साथ ही माइंड बूस्टर। और अगर थोड़ा पीछे और जाएं तो रामायण और महाभारत में पान का जिक्र तंबुल के नाम से मिलता है। मतलब जब हम पान खा रहे होते हैं तो हम सिर्फ टेस्ट नहीं इतिहास चबा रहे होते हैं। और अगर पान की बात की जाए तो पान का इतिहास राजघराने से मिलता है। कहा जाता है मुगल काल में पान सिर्फ खाने की चीज नहीं था, ये स्टेटस सिंबल बन चुका था। फिर चाहे बेगमों के लिए अलग पान की बात की जाए या फिर बादशाह के लिए एक अलग पान, चांदी के चूना दानी, सोना चढ़ा हुआ पान दान और पान बनाने के लिए अलग से ट्रेंड लोग आते थे। वो कहा है कि दरबार में बात से पहले पान आता था, क्योंकि जुबान में मिठास हो तो फैसले भी नर्म हो जाते हैं। मुगल दौर में तो पान का इतिहास देख लिया, लेकिन पान का सफर भारत में कैसे शुरू हुआ इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: जितनी कोशिश कर लो सारा होगा कोई।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अच्छे कारवा लेकर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं आप सभी के पास रेडियो महारानी 89.6 FM पर। आज कहानी सुन रही है पान की। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, आज के इंडिया की भी है। मुगल एरा में पान का कनेक्शन तो देख लिया, अब बात करते हैं पान का भारत में सफर कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है कि हर शहर ने पान को अपनी बोली सिखा दी। फिर बात की जाए बनारस की तो मीठा पान गुलकंद सौंफ वाला, शादी और संस्कारों में हिस्सा लेने वाला पान।
1: खई के पान बनारस वाला।
0: फिर बात की जाए कलकत्ता की, जहां फेमस है फायर पान। थोड़ी ही दूर यूपी बिहार वाला पान। जहां बात की जाए सादा पान, रोजमर्रा की आदत है लोगों की। इतना ही नहीं, बात की जाए अपने हैदराबाद की तो कहा जाता है जर्दा पान, यानी कि मुगल टच वाला पान। वो कहा है कि इंडिया में पान सिर्फ खाया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। आखिर इतनी तारीफ के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि पान में क्या खास है, तो बात करते हैं आज कल्चर कारवा में पान की खासियत की। पान के पत्ते में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहा जाता है ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ाता है, और इतना ही नहीं माउथ फ्रेश रखता है। लेकिन फिर भी याद रखने की बात ये है कि जर्दा मिलाने के बाद ये सेहतमंद पान भी हानिकारक हो जाता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग सफर रहा इंडिया में पान का। और इतना ही नहीं, मुगल एरा से इंडिया के सफर तक पान ने अपनी एक जगह बना ली, और आज पान और इश्क का एक अलग कनेक्शन देखने को मिलता है। इस कनेक्शन को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ बात कर रहे हैं आज पान और इश्क के कनेक्शन की। कहा जाता है पुराने जमाने में पान सिर्फ स्वाद नहीं था, ये इश्क का इशारा होता था। लड़के पान भेजे, लड़के एक्सेप्ट करें तो बात पक्की मानी जाती थी। वो कहा है कि पान के पत्ते पर लिखी थी मोहब्बत और जवाब हाथों से मिल जाता था, ना जुबान की जरूरत थी ना इशारों की, ये पान अपना काम पूरा कर जाता था।

का सिर्फ इतिहास ही नहीं, पान का सफर भी बहुत खूबसूरत रहा। पान की अगर बात की जाए तो पान ने हर कल्चर में अपनी एक अहमियत बना ली। कहा जाता है पान इन पॉप कल्चर अपने आप में बड़ा फेमस है। फिर चाहे बात हो, बॉलीवुड ने पान को स्टाइल और स्वैग बना दिया। वो कहा है कि खाई के पान बनारस वाला।

एक कल्चरल अनाउंसमेंट था। और इतना ही नहीं, अगर इसके पीछे की ट्रिविया की बात की जाए तो कहा जाता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीटल लीफ प्रोड्यूसर है। और साथ ही बात की जाए बनारसी पान की, तो बनारसी पान को GI टैग मिल चुका है। और इतना ही नहीं, पान की तारीफ में साउथ ईस्ट एशिया में पान भारत के ट्रेडर्स ले गए, इसीलिए शायद पान को पहले मेडिसिन माना जाता था। वो कहा जाता है कि पान आज भी इश्क फरमाता है। पान से जुड़ी हुई और भी बातें जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया पान के इतिहास की तरफ। वो कहा है कि हर पान की दुकान पर सिर्फ पान नहीं मिलता, वहाँ मिलती है शहर की गॉसिप, पुरानी कहानियाँ और थोड़ा सा वक्त। अब बात करें पान की दुकान की। कहा जाता है पान की दुकान छोटी भले ही होती है पर वहाँ पूरा शहर मिल जाता है। फिर चाहे बात की जाए पॉलिटिक्स की, प्यार की, गिले शिकवे की और थोड़ी सी जिंदगी की। वो कहा है कि पान की दुकान पर वक्त रुक जाता है और लोग खुद को थोड़ा सा

0: कभी सत्य।
1: आज कल्चर कारवा के सफर में हमने बात की पान की कहानी के बारे में, पान के इतिहास के बारे में, पान के स्वाद के बारे में। तो मुझे दीजिए इजाजत, समय हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

कुछ चेहरे फिल्मों में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक दौर बन जाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

और आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज की शाम डेडिकेटेड है उस एक्ट्रेस को जिनकी सिंप्लिसिटी भी ऑडियंस को पसंद आई, रोमांस भी, इमोशंस भी और ग्लैमर भी। जी हाँ, आज का एपिसोड है अमीषा पटेल स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जहाँ एक तरफ सलमान का स्वैग था और दूसरी तरफ कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स। मैं बात कर रही हूँ, ये है जलवा मूवी।

और अगर इस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल फैमिली नंबर वन रखा गया था और फिल्म में एक इंटरेस्टिंग मेटा रेफरेंस भी था, जहां सलमान अनुपम खेर से पूछते हैं कि उनका शो सवाल 10 करोड़ का क्यों बंद हो गया, जो रियल लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति का राइवल शो था। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो एक पुरानी फैमिली फोटो भी नजर आती है इस मूवी में, लेकिन वो स्पेशली इस फिल्म के लिए क्लिक ही नहीं हुई थी, बल्कि 1982 की फिल्म ये वादा रहा से ली गई थी। और एक और हिडन डिटेल है इस मूवी की, वो ये है कि फिल्म हॉलीवुड मूवी कार्बन कॉपी से इंस्पायर्ड मानी जाती है। साथ ही ये वो वक्त था जब सलमान हेयर ट्रीटमेंट फेज में थे और इस फिल्म में उनका ओरिजिनल हेयर लुक लास्ट टाइम ऑडियंस को देखने को मिला। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनते हैं इस मूवी से ओ जाने जिगर गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसने एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया, जिसका एक डांस स्टेप आज भी लोग रिक्रिएट करते हैं। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए। हाँ।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी फिल्म के बारे में बात होगी जहां पर एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया गया। वो मूवी और कोई नहीं, कहो ना प्यार है।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था एक पल का जीना है गाना में, क्योंकि ये गाना पहले से कोरियोग्राफी नहीं किया गया था, शूट के वक्त ही ऋतिक रोशन और फराह ने मिलकर क्रिएट किया था। और इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फिल्म में राज की मदर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जो थी वो रियल लाइफ में अमीषा पटेल की एक्चुअल मदर थी। और साथ ही साथ अगर इनिशियली लीड रोल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि सबसे पहले करीना कपूर कास्ट हुई थी इस मूवी के लिए, लेकिन कास्टिंग के दौरान इनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर एंट्री हुई अमीषा पटेल की, जो कि बाद में ओवरनाइट स्टार बन गई। इतना ही नहीं, एक ट्रैफिक सिग्नल वाला आइकॉनिक सीन आता है जहां राज और सोनिया पहली बार मिलते हैं। वो एक्चुअली में ऋतिक रोशन की रियल लाइफ लव स्टोरी से इंस्पायर्ड था। और इस फिल्म की सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रही, ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि डायरेक्टर राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स तक फेस करने पड़े। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में कहो ना प्यार है गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसके डायलॉग्स भी आइकॉनिक बने, सॉन्ग्स भी, और एक हैंड पंप ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
5: अरे आगे भी बोलना।
4: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
4: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आपके साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आपने गुस्से में एक हैंड पंप भी उखाड़ दिया हो? जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूं, क्योंकि अब जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी में ये सीन हम सभी ने देखा है, और वो मूवी और कोई नहीं गदर एक प्रेम कथा है।
1: ये छोटी सी जिंदगी तेरा का लंबिया लंबिया तो घर आजा परदेसी।
0: ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये इमोशंस, पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस का कॉम्बिनेशन थी। और इस मूवी में ऑथेंटिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि शूटिंग के लिए दिल्ली रेलवे म्यूजियम से रियल स्टीम इंजन हायर किया गया इस मूवी को रियल टच देने के लिए। और ये फिल्म लगान के साथ सेम डे पर रिलीज करी गई थी, और लोगों को ये लगा था कि ये क्लैश रिस्की हो सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दोनों फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और अगर हम तारा सिंह की बात करें यानी कि सनी देओल की बात करें, तो हैंडपंप वाला सीन ओरिजिनल एक दूसरी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में वही सीन तारा सिंह यानी कि सनी देओल की आइडेंटिटी बन गया। और इस फिल्म की रियल इंस्पिरेशन बूटा सिंह और जेनाब की ट्रू स्टोरी थी, जहां पार्टीशन के वक्त एक सिख सोल्जर को एक दूसरे देश की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन रियल स्टोरी की एंडिंग उतनी हैप्पी नहीं थी जितनी फिल्म में दिखाई गई। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही रही है, तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से ये गाना, मैं निकला ओ गड्डी लेके। और इस गाने के बाद बात होगी अमीषा पटेल की एक बिल्कुल डिफरेंट रोल की, जहां ऑडियंस ने उन्हें पहली बार ग्रे शेड में देखा। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।
1: मीठी लस्सी तो पीता।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि अमीषा पटेल को देखा गया पहली बार ग्रे शेड में, और वो मूवी थी शॉर्टकट रोमियो।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म अमीषा पटेल के करियर के लिए काफी डिफरेंट थी, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर प्ले किया था और उन्होंने खुद कहा था कि ये रोल मेंटली और इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि फिल्म डायरेक्टर की खुद की तमिल हिट फिल्म थी जो कि हिंदी रीमेक की गई, और साथ ही साथ मोनिका के रोल के लिए पहले विपाशा बासु और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था, लेकिन इवेंचुअली ये रोल अमीषा पटेल को मिला। अगेन डेस्टिनी का खेल। तो चलिए, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं इस मूवी का खाली सलाम दुआ गाना, और इसी खूबसूरत गाने के साथ अब वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज का ये अमीषा पटेल स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक म्यूजिक को फील करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है। तो आज से ही सुनो पर जज मत करो।
2: चाहता हूँ कभी ना बीते चमकीले दिन।
3: यार, कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
7: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है
1: यस पापा
0: हेलमेट पहनना है
1: ओके पापा
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे
1: नो पापा
0: यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

में पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, फोन साइड रखो और बातों पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस भी किसी का सपोर्ट है।
2: तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आज से वेरीफाई करके ही लिंक्स और फाइल्स ओपन करें, बिकॉज़ वन क्लिक चेंजेस योर होल लाइफ।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
1: कुछ हटके.
3: हेलो, हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, और आज मेरे साथ स्टूडियो में है अर्चना पांड्या जी, जो कि पोइटेस हैं. मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
4: और साथ ही साथ मौजूद है वंदना रानी दयाल जी. मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
3: तो ये कविता लिखने का शौक, ये कब आपको हुआ? कहाँ से इंस्पिरेशन ली? किसको लिखते हुए देखा या सुना कि आपको लगा कि अब तो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए?
5: मैं 2018 से लेखन में आई
3: जी,
5: और मेरी मासी लिखती हैं, वो बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं
3: जी.
5: तो बस उनको देख के थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन हुई कि मैं भी लिखूं. उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया
3: जी,
5: तो बस उन्हीं का थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, उसी से लिखना शुरू.
3: जैसे हमने बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा पढ़ा है, सुना है, तो उनसे या उस दौर के जो भी राइटर्स हैं उनमें से कौन ज्यादा पसंद है?
5: क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ,
3: हाँ,
5: तो इसलिए महादेवी वर्मा,
3: अच्छा,
5: निराला जी,
3: जी, जी,
5: इन लोग को बचपन से ही पढ़ा.
3: हाँ,
5: घर में भी ऐसा माहौल था कि पढ़ा, मतलब साहित्यकारों को पढ़ना. मेरे पिताजी बहुत पढ़ने में विश्वास रखते थे, टीचर थे, तो बस ऐसे ही. और इलाहाबाद में तो पता ही है कि साहित्यकारों का
3: एग्जैक्टली
5: पूरा जमावड़ा है वहाँ पे, तो बस ऐसे थोड़ा सा पढ़ने का और लिखने का
3: शौक आपको वहाँ से हुआ
4: जी. वंदना मैम, आपके पास आते हैं, तो आपसे है अगला सवाल
3: कि कहाँ से लिखने का शौक हुआ? क्या वो चीज थी जो पढ़ी और आपको लगा कि अब तो मुझे भी पोएट्री की तरफ रुख करना चाहिए?
6: लिखने की ओर झुकाव तो हमारा बचपन से ही हो गया था, क्योंकि तब मैंने खत लिखना शुरू किया था
3: जी,
6: और वो खत मैं अपने पापा के नाम लिखती थी, क्योंकि उस समय दूर रहते थे.

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत हूँ और हम आज दो कवित्रियों से बात कर रहे हैं जिनकी रचनाएं बहुत खूबसूरत है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी की बात यहाँ पर की है, तो बेसिकली वो अपनी कविताओं में कम्युनिटी की बात करते थे या समाज, जो समाज हमारा देश है उसकी बात करते थे। तो आज के वक्त में क्या लगता है, कविताओं में समाज की बात हो रही है या सिर्फ एक फेम के लिए कविताएं लिखी जा रही हैं?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि आजकल लोग मतलब अपने लिए लिखते हैं, अपनी अपनी जो कहते हैं ना, अपनी सफलता के लिए या जो अपने लिए लिख रहे हैं।
0: अच्छा।
1: पहले के जो राइटर्स थे, समाज में जो चल रहा है वो उनके लेखन में दिखता था
0: जी,
1: उस समय के जो भी हालात रहते होंगे। लेकिन आज वो नहीं है, आज जो जिसका अपने मन करता है वैसे ही लिखता है। और साहित्य का आजकल मैं समझती हूँ कि थोड़ा गिरावट जरूर आ रही है।
0: और ये गिरावट क्यों आई है?
1: गिरावट इसलिए आई है कि अब सब लोग ही लिखना चाहते हैं।
0: अच्छा जी।
1: बहुत लोग लिखना चाहते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं समझती हूँ लिखने, अगर आप पढ़ते भी हो ना तो भी आप साहित्य की सेवा करते हैं।
0: जैसे आपने कहा अभी यहाँ पर कि अपने लिए लिख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि समाज के लिए, बिकॉज जब कोई एक राइटर कुछ लिख देता है और लोग उसे पढ़ते हैं तो बहुत प्रभाव छोड़ कर जाता है। और हमारे समाज में काफी सुधार भी हुए हैं, जो पहले हमारे राइटर्स रहे हैं जो उन्होंने लिखा है और लोगों ने पढ़ा है। तो आपको नहीं लगता कि शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राइटर्स को, पोइट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो समाज के हित में या देश के हित में भी बहुत ज्यादा लिखने पर जोर डालें?
1: कहते हैं ना, कलम में बहुत ताकत होती है। तलवार से भी ज्यादा कलम में ताकत होती है।
0: हाँ जी जी।
1: तो वही चीज हम लोग शायद अब भूलते जा रहे हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। हम सच नहीं लिखते, हम अब जो जिससे हमें मतलब थोड़ा फायदा होता है ना, हम वही चीज लिखते हैं। हम सच
0: थोड़ा दबा
1: दे, ढक देते हैं।
0: हाँ।
1: वो चीज है
0: जी जी। तो कहते हैं कि हर एक राइटर या हर एक पोइट का ना एक मूड होता है, एक थीम लाइन होती है। तो आपकी वो कौन सी विधा है जिसमें आप सबसे ज्यादा लिखती हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं खुद को?
2: मुझे गजलें लिखना ज्यादा पसंद है।
0: गजलें
2: जी
0: जी।
2: मैं लिखना कुछ भी शुरू करूं, मैं अंत गजल की तरफ मुड़ के ही करती हूं।
0: जी, क्योंकि आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं।
2: कंफर्टेबल हूँ, और उसमें जो एक फ्लेवर है ना गजल का, विरह मोहब्बत की बातें और बरसात की बातें और ये खूबसूरत चीजें लिखना मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको भी महसूसना चाहती हूँ, चाहती हूँ लोग भी महसूस करें।
0: जी, जैसे आपने कहा कि गजलें इसलिए लिखना पसंद है क्योंकि उसमें विरह मोहब्बत की बातें होती हैं। और ऐसा कहीं सुना भी है, मैं नहीं जानती कि इस बात में कितना फैक्ट है, लेकिन आपसे ही जान लेते हैं। चलिए, कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है वो वही बहुत अच्छा कवि बनता है, क्या ये बात सही है?
2: हाँ, आपने सही सुना है। और हिरण के भी जो मुँह से शायद आह निकली थी, तो कहते हैं कि गजल उसी से बनी।
0: अच्छा जी।
2: पर जी, पर ऐसा नहीं है, हम जब किसी की जिंदगी में उतरते हैं या किसी के बहुत करीब होते हैं
0: जी,
2: तो उसकी टूटन का एहसास भी, खास करके जब हम कवि दिमाग वाले इंसान हैं, तो उसका एहसास भी हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। कहते हैं पर काया प्रवेश, इसको कहते हैं
0: जी,
2: वो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो अपने साथ वो हुआ हो या ना हुआ हो, हम उसको लिख पाते हैं। और कई बार लोग गलत फहमी में आते हैं कि अच्छा ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है ऐसा।
0: आपने कहीं कुछ इमोशंस किसी और के भी देखे होते हैं?
2: हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है, तो हम उसे उतारते हैं सब
0: जी जी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है आज दिल शायराना।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना. और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ. मेरे साथ स्टूडियो में दो कवित्री मौजूद हैं. हम अब बात करते हैं वंदना रानी दयाल जी से. यहाँ पर हम स्टेज पोइट्री की बात कर लेते हैं, बिकॉज स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है. और आपने बहुत सारे काव्य गोष्ठी प्रोग्राम्स डेफिनेटली दिए होंगे, तो जब लोग आपको सुनते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो तालियां हैं वो एक पोइट की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं? आपको ऐसा फील हुआ है कभी?
1: नहीं नहीं, क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करती है, बल्कि वो तो आप में जोश लाती है कि हाँ, आपने जो दो पहले मिसरे बोले उनको पसंद आए तो उन्होंने तालियां बजाई
0: जी,
1: तो ये तो अच्छी बात होती है
0: जी. यहीं से एक सवाल और है. बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं, सारी चीजें तो नहीं होती होंगी जो आप प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लोगों तक पहुंचाना है और ये खुद के लिए छिपा कर रखना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप?
1: देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जैसे कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे अपने अंदर के जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, मैं उसे पब्लिक करना पसंद नहीं करती
0: जी.
1: और कई बार ऐसा होता है कि मैं उसमें थोड़ा सा लाग लपेट करके, ऊपर नीचे करके, मैं उसे कविताएं में उतारती जरूर हूँ, पर जेरोक्स कॉपी नहीं करती अपने मन का.
0: जी, जेरोक्स कॉपी की बात हो गई है, तो हम एक शायर के बारे में जरूर बात करेंगे, जॉन एलिया साहब. क्योंकि लोग ना उनको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज्यादा वायरल हैं. शायद लोगों ने उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी कोई एक या दो गजल कोई सुनी है कहीं, कुछ पढ़ा है?
1: पढ़ा तो बहुत है जी जी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है. लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उनका जो लहजा है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक लहजा है, और बड़े दमखम से वो बात करते हैं. पहले बड़े धीरे से 4-5 बार एक ही शेर को बोलते रहते हैं, उसके बाद एक बड़ा तगड़ा सा शेर सी लाइंस पीछे से आती है. तो वो उनका खास अंदाज है, जो एक बहुत ही मामूली चीज को ही बहुत.
0: मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि लोग उनको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये जो जेरोक्स का टाइम आ गया है, तो लोग जो कॉपी करने का सोच रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ कि लोग किसी को कॉपी करना चाहते हैं. देखिए, नकल के लिए अकल चाहिए होती है. कुछ लोग नकल करते हैं, पर आप ऐसे कीजिए कि आप अपना फ्लेवर उसमें जिंदा रखिए. आप जॉन एलिया नहीं बन सकते हैं, ये याद रखिए हमेशा. आप गालिब नहीं बन सकते हैं, आप उनको पढ़ के सीख के उसको अपनी शैली में उतार सकते हैं
0: जी.
1: तो जेरोक्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप उनसे सीखिए अपने लहजे में लिखिए
0: जी. अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है आज दिल शायराना.

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मेरे साथ यहाँ पर दो कवित्री मौजूद हैं, अर्चना पांड्या जी और वंदना रानी दयाल जी। तो अर्चना मैम, आपके पास आते हैं, अगला सवाल आपके लिए है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अभी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है, जिसको ओपन माइक कहा जाता है। एक जमाना था जहाँ काव्य गोष्ठी या मंच पे जो प्रोग्राम्स होते थे कवियों के, वो थोड़े से कम होकर लोग ओपन माइक की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऑल दो यंगस्टर्स इससे लिखने के लिए काफी ज्यादा खुश हैं कि उनको भी सुना जा रहा है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जो काव्य गोष्ठी है वो बदल कर अब हो गई है ओपन माइक, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं?
1: देखिए, वहाँ जैसे काव्य गोष्ठी जब होती थी तो वहाँ हम बहुत सारे लोगों को सुनते भी थे और अपना भी देते थे,
0: इनपुट देते थे।
1: लेकिन आज जो ओपन माइक में बस अपना सुन लिया और अपनी पीठ थपथपा ली, वही वाल। बाकी मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा था, काव्य गोष्ठियाँ जो होती थी और हम मिलते भी थे लोगों से, मिलना जुलना भी अब थोड़ा जैसे होता है ना, थोड़ा कम हो गया, लोग अपने में। वो है
0: जी। और आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या अकेले बैठकर किसी कमरे में लिखी हुई एक सच्ची लाइन, क्या ज्यादा पसंद होगा?
1: अकेले कमरे में बैठ के सच्ची लाइन।
0: तो वो क्या सच्ची लाइन लिखी थी, क्या हम सुन सकते हैं आज आपसे?
1: जरूर
0: जी।
1: मैं एक मुक्तक सुनाऊंगी।
0: बिल्कुल।
1: मुक्तक चार लाइनों का होता है।
0: जी जी।
1: तेरी

0: बगावत हमसे करता है, तेरा होने की चाहत में बगावत हमसे करता है।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अभी यहाँ पर वक्त है खूबसूरत से गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है आज दिल शायराना।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना. मेरे साथ दो कवित्री मौजूद है स्टूडियो में. तो अब हम बढ़ते हैं वंदना रानी दयाल मैम आपके पास और अगला सवाल आपके लिए है. अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करती हूँ, किसी आर्ट फील्ड की, जैसे हम म्यूजिक पर बात कर लेते हैं या हम डांसिंग पे बात कर लेते हैं, तो हर कोई एक मेंटोर चुनता है, देन उनसे सीखकर आगे बढ़ता है. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लिटरेचर या शायरी में पे बात करूं, तो बहुत कम लोग हैं जो मेंटोर चुनते हैं. वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो आपको क्या लगता है, इस फील्ड में भी एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है?
1: मुझे लगता है कि ये जो गुरु परंपरा वाली बात है ना, वो हर जगह सही है. आप भक्ति की ओर जाइए, आप ज्ञान की ओर जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आपका एक गुरु है तो आपको वो दिशा देगा. और बिना दिशा के आप भटके हुए इंसान हैं. जिस इंसान को दिशा मिल गई है वो आपसे बेहतर करेगा और जल्दी मंजिल की ओर पहुंचेगा.
0: जी, क्या बात है. अब बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई उस पोइट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है. जैसे अगर मैं बात करूं बहुत ऐसे शायरों के बारे में जो बहुत खालिस लिखते हैं, जैसे फराज साहब, फैज साहब, उनकी पोइट्री समझना हर किसी के बस की बात नहीं है. उनको समझ पाए उसके लिए लिटरेचर की बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना बहुत जरूरी है. तो एक अच्छी कविता की पहचान क्या है आपके अकॉर्डिंग?
1: पहचान ये है कि देखिए, हम लोग भी अभी कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ उसमें ऐसे लफ्ज आते हैं जो मुझे लगता है कि ये सब नहीं समझ सकेंगे, तो मैं कैप्शन में वो डाल देती हूँ उसकी मतलब, इसका मतलब क्या है.
0: जी जी जी.
1: ताकि अगर कुछ ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या, वो कहाँ से उसके मजे ले पाएगा. तो ये बात होती है. अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस महफिल में हैं, आप देखिए यंगस्टर्स की महफिल है तो आप वैसी गजल सुनाइए. अगर थोड़े पढ़े लिखे या साहित्यिक लोग हैं तो आप उस तरह की गजल सेलेक्ट कीजिए. या अगर आप कहीं लिख के दे रहे हैं तो कैप्शन में उसके मतलब डाल दीजिए.
0: जी, क्या बात है. अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये सवाल तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ज्यादा पसंद है, अकेले बैठकर एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई लाइन या ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां?
1: देखिए, तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है.
0: और आई थिंक तालियां भी इम्पोर्टेंट है.
1: तालियां भी इम्पोर्टेंट है, अकेले बैठ के पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है. ओपन माइक मैं सोचती हूँ यंगस्टर्स के लिए अभी ज्यादा अच्छा है.
0: जी,
1: क्योंकि जिनको स्टेज नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान नहीं है, जो यंग राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं, उनके लिए ओपन माइक इज 100% ओके. लेकिन जिनको मंच मिल रहे हैं वो मंच भी चाहता है, तालियां भी चाहता है.
0: जी जी.
1: और कभी अकेले में पढ़ना चाहता है, ये तो मूड की बात है. आपने शुरू में कहा था
0: ये मूड वाली बात है, यहाँ 50-50 पर चलेंगे. जी जी. तो कुछ ऐसा लिखा हो जो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया हो और आपको, आपके दिल के भी बहुत करीब है, वो रचना आज जो यहाँ पर रखना चाहें आप?
1: अपनी लिखी हुई.
0: बिल्कुल. आप गाकर सुनाएंगी या पढ़कर?
1: आपकी नजर ये गजल कर रही हूँ, मैंने हाल में लिखा था
0: जी,
1: उसको तरन्नुम में ढाला है. दीदार हमको हो जो तेरा, मसरूर होंगे हम. दीदार हमको हो जो तेरा, मसरूर होंगे हम.

0: तो हर रोज ही मर जाया करेंगे हम।
1: क्या बात है,
0: बात बिना बात न रूठा

0: रब से तुम्हें हर रोज ही मांगा करेंगे हम, बात बिना बात न रूठा करेंगे हम।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज, दिल शायराना मेरे साथ स्टूडियो में है वंदना रानी दयाल जी और अर्चना पांड्या जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत कवित्री हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो जाते जाते
1: जी,
0: हमारे लिसनर्स के लिए और उन यंग पोइट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली उनको क्या करना है, क्या लिखना है वो नहीं पता, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारा पढ़िए, बहुत पढ़िए, उसके बाद आप दो लाइनें लिखिए
0: जी।
1: क्योंकि जब भी आप किसी पिच पे आते हैं और आपको वहां से लॉन्चिंग पैड है आपके लिए, आप वहां से उड़ान भरना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आइए
0: जी।
1: जितने तैयारी के साथ आएंगे आपको उड़ान उतनी ऊंची मिलेगी, आपको अच्छी वाली फ्लाइट मिल जाएगी।
0: क्या बात है।
1: इसलिए पढ़िए ज्यादा, जब फिर लिखने की बात आएगी तो बहुत सारे पेपर्स में, मैगजीन्स में उनके मेल आईडी होते हैं, आप वहाँ भेजिए, धीरे धीरे आपको लोग पहचानेंगे तो बहुत सारे मंचों पे आपको खुद ही बुलाया जाएगा।
2: यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लिखे दिल से लिखे।
0: क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे साथ जुड़ी और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। थैंक यू अगेन
2: आपको
0: जी। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 106 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कच्छ हटके और मैं हूँ आपके अपने
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आए हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात कर रही हूँ उनके लिए तो अपना फेवरेट किरदार पाना जैसे चौधरी का चांद हो गया था, क्योंकि झूठ बोलकर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और एक मुकाम तो ऐसा आया जब इन्हें लगा कि बस अब मेरी यही इमेज हिंदी सिनेमा में फिक्स हो चुकी है, इससे हटकर मैं कोई भी किरदार नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन अंदर एक जील तो थी कुछ नया और वर्सटाइल करके दिखाने की, पर इनकी इच्छा पूरी हुई अपने फिल्मी करियर के 20 साल बाद। जी हाँ, हम लोग अक्सर ये कहकर हार मान जाते हैं कि इतना वक्त हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे मेरी फेवरेट चीज नहीं मिल पा रही है या वो चीज जो मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए, इन्होंने 20 साल इंतजार किया अपने उस सपने को पूरा होते देखने के लिए। आज किसकी बात कर रही हूँ जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ, ये कैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर रहे जिन्होंने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर ले रखा था, ये मजबूत कंधे किसके थे अभी नहीं बताऊंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को। वापस आकर एक बार फिर से स्वागत करूंगी आप सभी का एक मजबूत किरदार के साथ।

0: life. Of course, per se water saves cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: चलिए उस दौर में जहाँ शर्मिला की अदाएं,
2: चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा.
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
1: हेलन के ठुमके और मधुबाला की सुंदरता के चर्चे थे हर जुबान पर. तो सुनिए ऐसे ही किस्से सुनहरी दौर की सपना के साथ. रात बाकी, बात बाकी में.

और अनीता फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत कैसी पहेली है जिंदगानी सुनिधि चौहान की आवाज में इस गीत को आप सभी एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास के बाद ही ये घर से ऑलमोस्ट भाग गए थे। क्या थी ये स्टोरी आपको बताऊंगी, फिलहाल नाम बता देती हूँ मैं आज के कलाकार का। और ये थे हमारे अपने असित सेन साहब, जिनका जन्म 13th मई 1917 को गोरखपुर में हुआ। और क्योंकि इनके पिताजी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाया करते थे, ग्रामोफोन और रेडियो का काम किया करते थे, तो असित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने पिताजी की उस दुकान पर बैठना। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भाग बनाया जाए। और तभी इन्हें पता चला कि इनकी दादी जी प्लान कर रही हैं इनको शादी के बंधन में बांधने का। तो इन्होंने तो मौका लगते ही एक चौका लगाया और अपने पिताजी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना चाहता हूँ, और तुरंत ही ये कोलकाता के लिए निकल गए। पर क्या आप जानते हैं, ये पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी थी बल्कि फिल्म मेकिंग करनी थी। पर इनके लिए तो कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था और ये था फिल्म मेकिंग का चस्का, जिसके चलते इन्होंने झूठ बोला कि ये पढ़ना चाहते हैं और कोलकाता आए थे। पर यहाँ पर एज अ प्रोफेशन इन्हें फिल्म मेकिंग तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज को फोटोग्राफी के नाम कर दिया। बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे इसलिए इन्होंने इसी चीज को एक्सेल करना ठान लिया, और देखते ही देखते इनका काम काफी अच्छा चल पड़ा। साथ ही इन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया ताकि फिल्म मेकिंग के गुण सीख लें। पर कहते हैं ना, होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो इनके लिए कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे और आगे क्या होना बाकी था, ये सभी बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल सोना जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, गाने की बात कर रही हूँ। ओ मेरे सोना रे सोना, ओरिजिनली इसे गाया था आशा भोसले जी ने और इसे पिक्चराइज किया गया था आशा

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: सरिया सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म फुकरे। और एक बार फिर से इसी गीत के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो मोरानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हम रात बाकी बात बाकी में असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जो कि ये कहकर भागे थे कोलकाता कि मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई ना करके नितिन बोस साहब के साथ फिल्म मेकिंग सीखने का प्लान बनाया। और साथ ही इन्होंने कोलकाता का न्यू थिएटर ज्वाइन किया ताकि एक्टिंग की बारीकियों को समझ पाए। पर होता तो वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो भाई साहब जहां पर ये कमान पकड़ रहे थे एक्टिंग पर, वहीं इन्हें एक बार फिर से बुलावा आया इनकी जन्मभूमि गोरखपुर से, क्योंकि इनके पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी रिटायरमेंट पार्टी को शूट करने के लिए इन्हें बुलाया गया। और यहां आकर जब इन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया तो हर कोई इनकी फोटोग्राफी का कायल हो गया। इतना ज्यादा इन्हें प्रेज किया गया कि थक कर इन्होंने 1932 में गोरखपुर में ही अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो स्टार्ट कर लिया। स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और फाइनली सबको ये लगने लगा था कि चलिए अब तो ये प्रोफेशनली सेटल हो चुके हैं गोरखपुर में। पर यहाँ पर वक्त आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और क्योंकि फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से आता है इसलिए इन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और इस बार इन्होंने रुख किया मुंबई का, और यहाँ पर इन्हें एक फिल्म मेकिंग कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। पर तभी इनके घर से एक बुलावा आया, क्योंकि इनके दो फैमिली मेंबर्स बहुत ही सीरियस थे और उन दोनों को खो देने का गम कुछ इस तरह इन पर भारी पड़ा कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और गोरखपुर में कई सालों तक वो इसी गम में रहे। पर वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है, तो इनकी जिंदगी का सवेरा भी हुआ। और इस बार इन्होंने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कोलकाता को चुना, और यहाँ आकर इनके साथ जो हुआ वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ था बताऊंगी आपको, पर उससे पहले हम बुला लेते हैं ऋषि कपूर साहब को, जो आपको अपने दिल की कहानी चीख चीख कर सुनाना चाहते हैं।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।
2: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
4: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिनकी मुस्कान ने लाखों दिन जीते पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो किसी ने ना सुने, तो सुनिए रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। वैसे जितना दर्द इस गाने में है उतना ही दर्द कुछ लोगों की जिंदगी में भी होता है, पर जब हम उन्हें बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि इतनी स्ट्रगल भी उन्होंने कभी की होगी। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, सपना हूं मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कोलकाता जैसी सिटी को चुना और यहाँ आने के बाद एक दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा मुखर्जी और उनके पति देव मुखर्जी से हुई, और इन दोनों को उनका अंदाज कुछ इस तरह भाया कि वो उन्हें ले गए डायरेक्टर बिमल रॉय के पास, जो कि अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, और असित के रूप में उन्हें वो थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर मिल चुके थे। और बिमल रॉय के साथ मिलकर उन्हें कई फिल्मों में असिस्ट किया, जिसमें परिणीता, बिरज बहू, देवदास, दो बीघा जमीन, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब चलिए, जब बात आ ही चुकी है देव बाबू की यानी कि दिलीप कुमार साहब की देवदास की, तो उसके बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी बातें हैं उस फिल्म के बारे में करने के लिए कि मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड तो हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। फिलहाल थोड़े छोटे में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। इस फिल्म की मेन कास्टिंग में आपने दिलीप कुमार, जो कि देवदास का रोल प्ले कर रहे थे, सुचित्रा सेन, जो पारो के रूप में नजर आई थी, और साथ ही वैजंती माला को देखा था चंद्रमुखी के रूप में। पर क्या आप जानते हैं कि पहले पारो का किरदार मीना कुमारी जी को ऑफर किया गया था। बिमल रॉय चाहते थे कि इस किरदार को सिर्फ मीना कुमारी ही करें, पर उनके हस्बैंड कमल अमरोही साहब ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो कि बिमल रॉय चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मीना कुमारी को इस फिल्म से बाहर करना पड़ा। दूसरा मेन रोल था चंद्रमुखी का, जिसके लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था पर सबने इनकार कर दिया। ये एक्ट्रेसेस नरगिस, बीना रॉय और सुरैया थी, पर इन सब के ठुकरा दिए जाने के बाद ये कैरेक्टर पहुंचा वैजंती माला जी के पास, और क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दिया, जिस रोल के लिए बाद में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि वैजंती माला वॉज दी फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्म फेयर को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जितना ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था। ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस अवार्ड को, एंड फाइनली शी बिकेम दी फर्स्ट एवर एक्ट्रेस हु रिजेक्टेड फिल्म फेयर। और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर हमारे देव बाबू, जिन्होंने तो हिस्ट्री रच दी। 1955 में आई फिल्म देवदास उनकी 27th हिट फिल्म थी बॉलीवुड में, 27वीं हिट फिल्म। OMG, शायद इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, पर एक गाना ऐसा था जो कि इस फिल्म में नहीं डाला गया था। SD बर्मन साहब का तैयार किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, जिसे फिल्म में तो जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ 10 साल बाद देवानंद साहब की फिल्म गाइड में इस गीत को लिया गया और बन गया ये एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। एंड दैट सॉन्ग वॉज पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, कितनी सारी स्टोरीज होती है ना एक फिल्म के पीछे, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम शायद हमेशा के लिए अनजान रह जाते हैं। पर वापस चलते हैं अपने असित सेन साहब की ओर, जो कि फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर एक फिल्म ने उनका पूरा प्रोफाइल ही बदल के रख दिया भाई, उन्हें बना दिया सपोर्टिंग एक्टर। कौन सी थी वो फिल्म जिससे उन्होंने एक्टिंग का डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, ये आपको जरूर बताऊंगी, और किसने दिया था ये रोल ये भी शेयर करूंगी। पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
1: A few moments later,
2: मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं।
0: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लैनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: क्या आप जानते हैं, बच्चे की सेहत की शुरुआत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। सही पोषण मतलब स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। तो जुड़िए पोषण की पाठशाला में आरजे अंजलि के साथ, जहां हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे बात होगी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सही पोषण पर, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे गायनी, न्यूट्रिशनिस्ट और योग गुरु, सिर्फ आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए।
4: तो सुनना ना भूलें पोषण की पाठशाला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 101.6 FM
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हट के।

कोलकाता आने के बाद इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं फिल्मी जगत में कुछ अपना करियर बना सकता हूँ। तभी इन्होंने बिमल रॉय साहब को असिस्ट करना शुरू किया। कई फिल्में उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट की, पर वो आता है ना एक आपका सेचुरेशन पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ फिल्मों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो एज अ डायरेक्टर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, पर साथ ही साथ ये फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी कर रहे थे, जिसमें इन्हें 1945 में पहली बार हमराही फिल्म में देखा गया था। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, इतना छोटा सा कि फिल्म में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। 1949 में छोटा भाई फिल्म में एक छोटा कैरेक्टर, वो भी बहुत ही छोटा था पर हाँ विजिबल था, एक नौकर का किरदार इन्होंने निभाया और यहाँ से ये सबके नोटिस में आने लगे थे। और क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था, इसकी इंस्पिरेशन भी इन्होंने अपने घर में काम करने वाले एक सर्वेंट से ही ली थी। जिस तरीके से वो बोला करता था और जिस तरीके से वो सीरियस सिचुएशन को भी कॉमिक वे में प्रेजेंट करता था, एग्जैक्टली उसी से इंस्पायर्ड इन्होंने ये कैरेक्टर फिल्म छोटा भाई में प्ले किया था। पर 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में इनके कैरेक्टर को फाइनली लोगों ने प्रेज किया और इन्हें इनके अंदाज के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक टेंशन का टॉपिक भी बन गया था क्योंकि वर्सटाइल होना चाहते थे ये, पर इनकी एक कॉमिक इमेज इंडस्ट्री में फिक्स हो चुकी थी जो कि अब इनके लिए एक टेंशन का मुद्दा बन गया था। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक्टिंग से दूर करना शुरू किया और डायरेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। पर क्या वो डायरेक्शन में हिट हो पाए, ये बताऊंगी आपको, पर फिलहाल वक्त है कुछ ट्रैक्स का। एंजॉय करते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, दूल्हे का सहरा, सुहाना लगता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत, सिर्फ इंसानों के लिए

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: वो पहले पर्दे का जादू रेडियो पर फिर लौटने आ रही है सपना लेकर अपना शो रात बाकी बात बाकी हर शनिवार और रविवार रात

0: त्रिवेदी कुमार की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे जुल्मी सावरिया, और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। बात बाकी में आज हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की, जिन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स करना भी स्टार्ट कर दिया था अलोंग विद हिज डायरेक्शन। जहां इन्होंने एक जगह 1958 में चलती का नाम गाड़ी फिल्म में अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मधुबाला जी के साथ काम किया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया। सुजाता, 20 साल बाद, किताब, ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में ये दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि इनके कुछ कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि उन पर फिल्में बनने लगी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन पर फिल्में बनने लगी थी। जैसे कि इनका एक फिल्म का कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने गोपी चंद जासूस का कैरेक्टर प्ले किया था। वो कैरेक्टर इतना हिलेरियस था कि फिल्म एक्टर राजेंद्र कुमार ने अपने भाई नरेश कुमार के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम गोपी चंद ही रखा गया था। पर जैसा कि सब सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें असित दूर दूर तक नजर नहीं आए। सिर्फ फिल्म इंस्पायर्ड थी उस कैरेक्टर से जो उन्होंने फिल्म में प्ले किया था। इसी बात को लेकर वो इतना ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि वो फिल्मों में रोल कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और क्योंकि इनका कंपटीशन उस वक्त के बड़े बड़े कॉमेडियंस जैसे जॉनी वॉकर, महमूद, असरानी, केस्टो मुखर्जी, जगदीप जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ था, तो इन्हें भी ऐसा लगता था कि ये वो मुकाम हासिल कर जाएंगे जो वो कर रहे थे। खैर, इनके अंदाज में जो मस्ती और जो चुलबुलापन था वो आपको सुनाती हूँ, पहले आप उसे एंजॉय कीजिए।
1: देश के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेता जी नहीं है, गांधी जी नहीं है, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती।
0: इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि कोई निराश होकर एक्टिंग के करियर से दूर जाना चाहेगा। जी हाँ, असित सेन साहब जाना चाहते थे, और अब इन्होंने फिल्मों से एज एन एक्टर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया और दोबारा से फोकस किया अपने डायरेक्शन पर। यहाँ इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप भी। कौन कौन सी फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड मिले और कौन कौन सी फिल्में ऐसी थी जिन्हें इन्होंने पूरे दिल से बनाया पर वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, इन सब के बारे में बातें करते रहेंगे। पर उससे पहले आपके दिलों का हाल जान लेते हैं।

रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते।

0: इंसानियत का फर्ज निभाएं।
1: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन।
3: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इजीली गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
0: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

कितना प्यार है आपको हमसे और हमको आपसे, तभी तो हर रोज आपके लिए कुछ डिफरेंट सा लेकर आने की कोशिश रहती है हमारी। और आप भी हमें इतना प्यार करते हैं कि तुरंत 89.6 को ट्यून इन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपने आज के स्टार की ओर, जो कि हैं असित सेन साहब, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिमल रॉय साहब। इनको असिस्ट करते करते इन्होंने कई सारी फिल्मों का एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इन्हें बंगाली स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने का भी काम दिया जाता था। अब ये वहां पर कुछ नॉवेल्स से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि इन्होंने बंगाली नॉवेल्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई और बंगाली फिल्म्स के रीमेक भी हिंदी में बनाया करते थे। पर बिमल रॉय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बाद सोली इन्होंने कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, जिसमें सफर, बैराग, अनाड़ी, ममता, अनोखी रात, खामोशी, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों का नाम शामिल है। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई। हिट फिल्मों में सफर फिल्म का नाम शामिल है, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। पर 1982 और 3 में आई फिल्म वकील बाबू और मेहंदी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इनका एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन से

बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, वो जो स्लो वर्जन ऑफ डायलॉग डिलीवरी था इनका, दैट वॉज अमेजिंग। और क्योंकि इन्होंने अब काफी ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, इसलिए लोग इनके थ्रू आउट इनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने लगे थे। कभी फिल्मों में जासूस तो कभी वकील, तो कहीं पर ये एक पैम्पर करने वाले पापा के रूप में हमें नजर आ रहे थे। और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी नाम से जाना जाने लगा था, उस्ताद। ये सिंगल टेक रिएक्शन के उस्ताद थे। ये कहा जाता है कि जनरली अपने सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ एक सिंगल टेक में ही डन कर दिया करते थे। पर वो कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ गम छुपा होता है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी ज्यादा इफेक्टेड थी। क्या चल रहा था ये आपको बताऊंगी, तब तक आप एंजॉय कीजिए रीमेक वर्जन ऑफ मंगड़ा।

0: जानी ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
2: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
3: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
2: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा?
3: अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: हर आवाज में कहानी, हर चेहरे में जमाना, रात बाकी बात बाकी में बिखरेगा फिर वही दौर पुराना।
1: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
2: Oh yeah, it's the one that we're not saving, y'all.

क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, ये बात हम कह सकते हैं हमारे असित सेन साहब के लिए, क्योंकि इनकी सूरत के ही तो सब कायल हो गए थे। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी अदाएं, ये कुछ इतनी स्वीट हुआ करती थी कि हर कोई इन्हें फिल्म में लेना भी चाहता था। अब गोपी चंद कैरेक्टर को ही देख लीजिए ना, इन पर तो पूरी फिल्म ही बन गई थी। अलग बात है कि ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, पर इनसे इंस्पायर्ड एक पूरी फिल्म बनी थी, ये छोटी बात तो नहीं है। जितना संघर्ष इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, किसी और की जिंदगी में होता तो शायद उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ना होती, पर हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो गम छुपा होता है, उस गम को ओवरकम भी तो करना होता है। असित सेन परफेक्ट एग्जाम्पल थे इसी बात के। इन्होंने लाइफ में आई हर प्रॉब्लम को हंसते मुस्कुराते फेस किया, छोटी छोटी बातों से इंस्पिरेशन ली और उससे अपनी एक ऐसी इमेज बनाई इंडस्ट्री में कि असरानी और जगदीप जैसे कैरेक्टर्स को भी ये टक्कर देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में खड़े हो गए थे। खैर, जहां बात इनकी डायरेक्शन की थी तो वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब बात एक्टिंग की आई तो वहां पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए भैया, क्योंकि पूरी 200 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपीयरेंस दिया है। वैसे जनरली हमने ये देखा है कि लाइफ में थोड़े से भी हर्डल्स हमारे सामने आते हैं तो वी प्रेफर टू क्विट, लेकिन असित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ ऐसी दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से इन्हें एक बार को लगा कि शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वहीं गोरखपुर में अपने स्टूडियो में ही काम करता रह जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है तो पहले ही उन छोटी छोटी चीजों को कीजिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। फोटोग्राफी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर और फिर एक कॉमेडियन बनने का मौका मिला। तो लाइफ में कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और वो काम कब सीढ़ी बनकर आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए जो भी काम मिले उसे दिल खोल के करना चाहिए। फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और असित सेन साहब की इस जर्नी को हम सब ने थ्रू आउट डे एंजॉय किया। और इसी के साथ वक्त भी हो चला है मेरा आप सबसे विदा लेने का। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, गर्मी बहुत है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूबसूरत

0: एक गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद कौन सी चीज बच्चा पचा पाएगा। कंफ्यूज्ड है पर अब नहीं, सुनिए पोषण की पाठशाला आरजे अंजलि के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, जो देंगे आपके सभी सवालों के सही और सेहतमंद जवाब।
1: जिंदगी में भी हर खुशी में भी लगती है एक कमी,
0: तो बिल्कुल भी सुनना मत भूलिए हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे पोषण की पाठशाला, क्योंकि हर माँ और बच्चे का अधिकार है सही पोषण और स्वस्थ जीवन।

हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं धड़के।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibes. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

आपको याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: राजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कहती
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लौंडा दिल तेरा लेके ही तो लेक बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियाने भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्जुन नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: वादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई मुस्कुराई
1: कभी है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पता नहीं हो जाएगा,
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: जिंदगी बचाए ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: साइबर क्राइम से जा
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है, हैकिंग क्या हो, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा
1: है? जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

यारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे बुलों के प्यार करूं, सारा जहां।

मस्त पहाड़ों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो जहां सारा जहां।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, जी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं, एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है।
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय 6FM कुछ हटके।

मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुरैया मारे गिल को मुरैया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
1: अरे रफ्तार देखो आप, अरे बाजू।

0: तलना यूं ही साथी
1: खुली तो प्यारे हाथ की
0: दिल में लगे चलना यूं ही साथी
1: मर पंथी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की
0: मुश्किल जो आ पड़े होकर से
1: दिल मिल के टा

0: जो समझाए उसकी मचाए उसकी मच धूम,
1: जो समझा उसी की मच धूम, जो समझा उसी की मच धूम।
0: बाजू

0: प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी।
0: आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं?
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीखी है। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी
1: मिरेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की बाजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी हल सकती है।

0: ने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश
0: तुम्हारा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चले।

0: कबीर, कोई सस्ता सा नहीं लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पता नहीं हो जाएगा।
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: जिंदगी बचाए ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महाराज।
1: आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आप

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो, इसने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा।
1: कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम आए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ एट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो, अरूड सेफ्टी कैंप 9.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: है खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: साथ,
1: अरे रे, ना।
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

वाणी। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही सन्नी की आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में भी संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उसमें होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है दिया बंशीवट मानसरोवर, ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी उस सीधे वहां गई, देखा कौन शरारत भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी जो अनुराग को बढ़ा रही है, बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं, रणिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर और अश्रुप प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल राधा राधा राधा। ये कुमारी स्वामी जी का ऐसे आर्त भाव ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे, श्री जी की सखी सुनें जो भगवान को भी आदेश करते हो, सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, लाडली लाल हमारी बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामी जी की है, रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, राधा कैसे, वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ, राधा नामय कार्यम हनुदिन मिलतम साधना गीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा टूटेगी सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, राधा नाम है। ये कौन सखी है जो ऐसी स्वामी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख तन कोटि अनंग तरंग